0: सुप्रभात, सुबह के 5 बजे है।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सुबह के 5:05 हुए हैं और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग इन बों कुराज। आज की सुबह शायद हर किसी के लिए आम सुबह जैसी नहीं है। कुछ लोग जल्दी उठ गए होंगे, कुछ के मन में सवाल है कि आज का दिन कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन सुनिए, हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है जो हमारे साथ है, यानी कि हमारे हाथ में नहीं है। उसकी चिंता में खुद को परेशान करने के बजाय जो हमारे हाथ में है उस पर ध्यान लेते हैं। घर पर है तो अपनों के साथ रहिए, शांत रहिए और ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर रखिए। मैं हूं नलमणि और आज की सुबह हम शुरू करेंगे अच्छे ख्यालों के साथ, सुकून भरे गानों के साथ। तो चलिए गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से कहिए, आज हम हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे आपकी आरम जो वीडियो मस्ती के साथ।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वैसे महफिल तो सच चुकी है ना, आज नवरात्रि का है चौथा दिन और पूजा होती है माँ कुष्मांडा की, तो क्यों ना आज की पॉजिटिव सोच और अच्छी वाइब्स के साथ कंटिन्यू करें आज के राइज एंड शाइन शो को। जिंदगी में चैलेंजेस तो आते रहेंगे लेकिन उम्मीद और मुस्कुराहट कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप सुन रहे हैं राइज एंड शाइन विद नर्मनी और सुबह को बनाते हैं थोड़ा और खूबसूरत अच्छे गानों के साथ भूखो आज अगर आप अभी अभी उठे हो। एल्सो गुड मॉर्निंग टू यू।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: और अब वक्त है बॉलीवुड की दुनिया में एक नज़र डालने के लिए. आज बर्थडे है एक्टर डायरेक्टर परमीत सेठी जी का, तो हमारी तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं. एंड ऑल दोज जो आज अपना स्पेशल डे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू. अरे अभी अभी मैसेज आया है कि आज बर्थडे है ऑफ सामलाल जी, जो कि आप कहाँ के रहने वाले हैं ये समझ में नहीं आया. लेकिन आज माधवी गुरन जी का भी जन्मदिन है, जो कि खेवकर के रहने वाली है. विशेज फ्रॉम आरती, विशाल एंड अवनीश कुटे, जैसे भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं. एंड आप हैं सुभी माता पुलट जी, और आज आपका जन्मदिन है. हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द होल RM2 टीम. और भी मैसेजेस आ रहे हैं जिनको हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए नेक्स्ट गाना हो जाए जो आज अपना स्पेशल डे मना रहे हैं.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: ये सभी वक्त हो चला है आपके राशिफल का, तो चलिए जानते हैं कि आज के सितारे आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं, लकी कलर और नंबर आपका कौन सा होगा। तो शुरुआत करते हैं वेदर।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज ना कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, लेकिन किसी भी फैसले में जल्दबाजी मत कीजिए। टीम वर्क से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लकी कलर आज आपके है स्कारलेट रेड और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: पैसा और काम से जुड़ी प्लानिंग पर ध्यान दें, किसी अपने की सलाह आज आपके काम आ सकती है। रिश्तों में थोड़ा प्यार जताना ना भूले। लकी कलर आपका है एमराल्ड ग्रीन और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज ना आपकी बातों का मैजिक जादू चल सकता है। नए लोगों से मिलना और अपनी आइडियाज शेयर करना फायदेमंद हो सकता है। बस बोलने से पहले सामने वाले की फीलिंग्स भी समझे। लकी कलर आज आपका है येलो और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: घर परिवार के साथ वक्त बिताने से मन खुश रहेगा। अपनी फीलिंग्स को दबाने के बजाय प्यार से एक्सप्रेस कीजिए खुद को और पेंडिंग कामों को निपटाने की पूरी कोशिश कीजिए। कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आपकी पर्सनालिटी लोगों को इम्प्रेस कर सकती है। काम में अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए और घर में भी पॉजिटिव माहौल बनाए रखें। कलर आपका है गोल्डन ऑरेंज और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आपकी डिटेल पर नजर आज किसी काम को बेहतर बना सकती है। हर चीज को परफेक्ट करने के चक्कर में खुद को स्ट्रेस मत दीजिए, थोड़ा आराम भी जरूरी होता है। लकी कलर आपका है सेज ग्रीन और नंबर है 8।
2: लिब्रा तुला राशि,
1: आज अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाने का अच्छा दिन है। रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और कोई नई बात सीखने का मौका भी मिल सकता है। लकी कलर आपका है रोजी पिंक और नंबर है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज आपके इमोशंस थोड़े इंटेंस हो सकते हैं, इसलिए हर बात पर तुरंत रिएक्शन ना दें। सोच समझ कर लिया गया फैसला आपको फायदा पहुंचा सकता है। कलर आपका है बागंडी और नंबर है 4।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज अपनी पॉजिटिव एनर्जी को काम में लगाइए। कोई नया आइडिया या अच्छी खबर आपके मूड को अच्छा बना सकती है। बस बड़े फैसलों में प्रैक्टिकल रहना ना भूलें। कलर आपका है पर्पल और नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन प्लानिंग से सब संभल सकता है, संभल जाएगा। हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपने लिए वक्त निकालना मत भूलिए। कलर आपका है चारकोल ग्रे और नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज आपके दिमाग में कुछ हटके आइडियाज आ सकती हैं। दोस्तों के साथ बातचीत से इंस्पिरेशन मिलेगी। अपने आइडियाज लिख लीजिए और उन पर काम करना शुरू करें। कल आपका है ब्लू और नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दें, लेकिन इम्पोर्टेंट डिसीजंस फैक्ट्स देख कर ही लीजिए। क्रिएटिव काम और अपनों के साथ अच्छा वक्त आपको सुकून दे सकता है। कल आपका है समुद्री हरा और नंबर है 12।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Must

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सुबह के 5:56 हो चुके हैं। हर दिन की शुरुआत एक अच्छे ख्याल के साथ करना चाहिए हमेशा। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो अपना काम आराम से शुरू कीजिए। अगर आप घर पर अपने बच्चों या बुजुर्गों के साथ हैं तो उन्हें भी तसल्ली दीजिए। आप अगर किसी चिंता महसूस कर रहे हैं, कोई भी चिंता महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए कि मदद मांगना बिल्कुल ठीक है। एंड आपको बता देते हैं कि जल्द ही मिलेंगे संक्षिप्त समाचार के साथ, जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए यही पर RM2 रेडियो मस्ती पर ही।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सख्त निगरानी में शुरू हुई रात, जहां शांति भंग होने में ज्यादा देर नहीं लगी। कल रात देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं पेश आई। कर्फ्यू के बावजूद भी लोग सड़कों पर उतर आए। कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाना ज्यादा आसान रहा, लेकिन इस बार हिंसा केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों के साथ साथ देश के पूर्व और दक्षिण में भी फैल गई। उत्तरी इलाके गुडलैंड्स में भी देर रात तक अधिकारी इन प्रदर्शनों को काबू में करने की कोशिश में लगे रहे। बॉम्बू, सेंट क्वा, गुडलैंड्स, मेबर्ग, बेजुतोंबो, एक ही नज़ारा। सड़कों को बाधित किया गया, पहिए जलाए गए, दुकानें लूट ली गईं। बॉम्बू बर्मिनल सुपरमार्केट में लूटपाट की खबर है। कास्कावेल मॉल की कई दुकानों में चोरी करने गए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 नाबालिग हैं। मेबर्ग में एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया। सेंट क्वा और बेजुतोंबो में संयम बनाने के लिए पुलिस को टियर गैस का प्रयोग करना पड़ा। काथोबोन में 2 लोगों को मोलोटोव कॉकटेल के साथ पकड़ा गया। याद रहे कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को 5 साल कैद की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तड़के सुबह आखिरकार देश में थोड़ी राहत आई और अभी कर्फ्यू हटा दिया गया है। देश के 15 इलाकों में आज सुबह 6 बजे कर्फ्यू हटाया गया, जो कल रात 8:30 बजे लागू हुआ। देश के इन इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों के बाद ये फैसला लिया गया। आज दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट की आपात बैठक लगाई जाएगी, ताकि स्थिति का जायजा लिया जाए और निर्धारित किया जाए कि आगे कौन से कदम उठाने होंगे। कल देश को संबोधित अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि जानकारियों के मुताबिक घृणा की भावना के साथ एक विशेष गुट इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो देश में शांति भंग करने के उद्देश्य से दहशत फैलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शुक्रवार रात को कोलुव्यू में हुई घटना का कड़ा खंडन किया, जहां इरुजीतो मा को गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि जो इस पुलिस अफसर ने किया वो अस्वीकार्य है, लेकिन एक की सजा सबको क्यों दी जाए। उन्होंने याद दिलाया कि पुलिस फोर्स का उद्देश्य देश और जनता की सुरक्षा करना है। उन्होंने आगे कहा कि इन हिंसक प्रदर्शनों और आगजनी के जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज दूसरे दिन के लिए सभी निजी और सार्वजनिक पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक, सेंट स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थाएं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट MITD, मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और डे केयर सेंटर यानी नर्सरीज बंद रखे जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते यह फैसला लिया गया। आज के लिए निर्धारित परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट और हायर स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं आज मॉरिशस, रोड्रिग्स और अगालेगा में निर्धारित समय पर की जाएंगी। इन परीक्षाओं में भाग लेने वालों को निर्धारित समय पर परीक्षाएं देनी होंगी। पियर्सन एडेक्सल की परीक्षाएं भी जारी रखी जा रही हैं। मेट्रो सेवा ठप, स्कूल बंद, लेकिन SC और HSC की परीक्षाएं जारी। बुधवार को लेकर जानने योग्य ये कुछ बातें। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूल बंद। विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी और जैसे कि हमने कहा, SC और HSC की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। परिवहन सेवाओं की बात करें तो बस सामान्य रूप से चलेंगी, लेकिन मेट्रो एक्सप्रेस की सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। भारी नुकसान के कारण आज कोई भी ट्रैम नहीं चलेगी और पूरे सप्ताह मेट्रो सेवा बंद रहने की संभावना है। निजी क्षेत्र में कंपनियों और कर्मचारियों की निगाहें अब बिजनेस मॉरिशस की सिफारिशों पर टिकी हैं, जिनकी घोषणा अगले कुछ मिनटों में होने की उम्मीद है। वहीं आज शाम एक बार फिर कर्फ्यू लगाने के संबंध में अंतिम निर्णय दोपहर बाद लगने वाले कैबिनेट की मीटिंग के दौरान की जाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना आज की जा रही है। मान्यता है कि माता कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। उनकी तेजस्वी आभा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करती है।
विदेश में वैटिकन की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पोपलियो 14 को

0: फेफड़ों का कैंसर हुआ है। हालांकि उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए सर्जरी सफल रही। 71 साल के पॉप की मंगलवार को रोम के अस्पताल में लगभग 90 मिनट तक सर्जरी की गई। वैटिकन के अनुसार सर्जरी सफल रही और इस दौरान कोई जटिलता सामने नहीं आई। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। मस्करिंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। मात्र सुबह ऊंचाइयों पर कुछ हल्के बादल घिरा सकते हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है। रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समंदर में न जाने की सलाह है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 5:40 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 6:11 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: कहते हैं जिंदगी में कितनी भी उलझन क्यों ना हो, एक अच्छा गाना दिल को फिर से मुस्कुराना सिखा सकता है। और आज हम इसी मुस्कुराहट को अपनी सुबह का हिस्सा बनाएंगे। याद रखिए दोस्तों, पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करें। पॉजिटिव रहने का मतलब है मुश्किल वक्त में भी अपने अंदर हौसला बनाए रखना। तो आपका स्वागत है फिर से राइज एंड शाइन शो पर। सेकेंड आवर शुरू हो चुका है, तो चलिए नेक्स्ट गाना सुनते हैं हरिहरन जी की आवाज में और साधना सरगम जी की आवाज में।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: पहली बार मॉरिशस में भजन जैमिंग को दो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है एक जबरदस्त और लाइवली म्यूजिक फेस्ट। एवरी इवनिंग आज फ्रॉम 7 PM 29th ऑफ अक्टूबर को भजन जैमिंग के पायनियर्स बैक स्टेज सिबलिंग्स, 30th ऑफ अक्टूबर को लोकल आर्टिस्ट का शानदार लाइनअप, यूफोरिया क्रू, हार्मनी ऑन, अवनी और अभिनव, शंकर आर्या, शिवाइब और कोविला द आर्टिस्ट, एंड ऑन द 31st ऑफ अक्टूबर को भाविक आर्या और गौरी माधुरी की खास जोड़ी। संगीत, भक्ति और ऊर्जा से भरी शाम का हिस्सा बनिए। टिकट्स अवेलेबल ऑन ticketbox.mu और कॉल ऑन 5508-3602।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: क्या आपने कभी गौर किया है कि एक अच्छा गाना आपका पूरा मूड बदल सकता है. कभी थकान में सुकून देता है, कभी उदास चेहरे पर मुस्कान ले आता है और कभी कभी पुरानी यादों के दरवाजे खोल देता है. तो आज की सुबह एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए कि अपने दिन की शुरुआत एक ऐसे गाने से कीजिए जो आपको खुशी दे. एंड वैसे आपके मैसेजेस का इंतजार भी है 5499124 पर, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं बिना हिचकिचाते. एंड ऑल्सो नेक्स्ट गाना करते हैं आपके नाम कुछ स्पेशल सा, इस बार कुमार सानू जी की आवाज़ में आपकी इस मॉर्निंग को अमेजिंग बनाने के लिए.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: सुबह के 6:30 बज चुके हैं। सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सख्त निगरानी में शुरू हुई रात, जहां शांति भंग होने में ज्यादा देर नहीं लगी, देश के कई इलाकों में कर हिंसक वारदातें पेश आईं। देश के 15 इलाकों में आज सुबह 6 बजे से कर्फ्यू हटाया गया, जो कल रात 8:30 बजे से लागू हुआ। देश के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया था। आज एक दूसरे दिन के लिए देश के सभी निजी और सार्वजनिक पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक, सैन्य स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थाएं, टेक्निकल और MITD केंद्र, मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, डे केयर सेंटर बंद, लेकिन SC और HSC की परीक्षाएं तथा पियर्सन एडेक्सल की परीक्षाएं भी जारी। मेट्रो सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं, लेकिन बस सेवाएं आज शुरू हो रही हैं। मेट्रो एक्सप्रेस द्वारा जायजे के बाद पता चला है कि भारी नुकसान हुआ है, जिस वजह से अभी तक इस सेवाओं को शुरू नहीं किया जा सकेगा। विदेश की खबरों में पोप लियो 14 को हुआ कैंसर, वैटिकन की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में इसकी घोषणा। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। अब समाचार विस्तार से। सख्त निगरानी में शुरू हुई रात, जहां शांति भंग होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कल रात देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं पेश आईं। कर्फ्यू के बावजूद भी लोग सड़कों पर उतर आए। कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाना ज़्यादा आसान रहा, लेकिन इस बार हिंसा केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों के साथ साथ देश के पूर्व और दक्षिण में भी फैल गई। उत्तरी इलाके गुडलैंड्स में भी देर रात तक अधिकारी इन प्रदर्शनों को काबू करने में लगे रहे। बॉम्बू, सेंट क्वा, गुडलैंड्स, मेबर्ग, बेजुतोंबो, एक ही नज़ारा। सड़कों को बाधित किया गया, पहिए जलाए गए, दुकानें लूट ली गईं। बॉम्बू में विनर सुपरमार्केट में लूटपाट की खबर है। कास्कावेल मॉल में कई दुकानों में चोरी करने गए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, इनमें 2 नाबालिग हैं। मेबर्ग में एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया। सेंट क्वा और बेजुतोंबो में संयम बनाने के लिए पुलिस को टीयर गैस का प्रयोग करना पड़ा। काथोबोन में 2 लोगों को मोलोटोव कॉकटेल के साथ पकड़ा गया। याद रहे कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को 5 साल कैद की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आज तड़के सुबह आखिरकार देश में थोड़ी राहत आई और 6 बजे कर्फ्यू हटा दिया गया। देश के 15 इलाकों में आज सुबह 6 बजे कर्फ्यू हटाया गया, जो कल रात 8:30 बजे से लागू हुआ। देश के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों के बाद ये फैसला लिया गया। आज दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट की आपात बैठक लगाई जाएगी, ताकि स्थिति का जायजा लेकर निर्धारित तक किया जा सके कि आगे कौन से कदम उठाने होंगे। कल देश को संबोधित अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि जानकारियों के मुताबिक घृणा की भावना के साथ एक विशेष गुट ही इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जो देश में शांति भंग करने के उद्देश्य से दहशत फैलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: Selon ce que la police peut rapporter, ça m'a dit là, je finance et je finance.

0: noyé par un trafiquant la drogue. Je pensais ces autres menacés par une action que la police peut prendre contre eux et ça, c'est une réaction. La police connaît qui ça m'a dit là et je peux prendre une mesure qui est bizarre. Selon nous, l'information, ça m'a dit là peut préparer eux pour refaire des zones encore.
1: सरकारी नेता ने सभी से देश में शांति बहाल करने और एकता बनाए रखने की भी मांग की।
0: Nous tous les semaines des images de violence inacceptable, ban station de la police qui peut brûler, ban l'endroit saccagé, ban véhicule de la police qui peut attaquer. Tout ça pas capable d'accepter. C'est dans un moment pareil qu'il nous besoin montrer plus grande solidarité. La paix et l'harmonie dans le pays. Lui dépend le sac mauricien, qu'il est jeune, qu'il est vieux, qu'il est politicien, qu'il est dans la police. Nous tous sauriez sa responsabilité là. Ben mauricien, il toujours exprime zot, par zot vote ou par manifestation. Aujourd'hui, tout ben mauricien peut condamner avec force ben acte de vandalisme, de pillage que je finis de trouver. Surtout là, et nos enfants peut composer l'examen Cambridge. Et nous en période de prière dans plusieurs communautés.
1: Ye curfew desh ke panch shahar Port Louis, Bouba Saint-Rosile, Quatre-Bornes, Palma, Vacua Phoenix, Cupid Forestside or Mayburg, Vieux Grand Port, Chemin Grenier, Belle Ombre, Casse-Noyale, Rivière Noire, Bambou, Petite Rivière, La Golette, Flac, Orgy, Goodlands, Grand Goptata, Triolemé, Lago Huata. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शुक्रवार रात को कोंलुव्यू में हुई घटना का कड़ा खंडन किया जहां एलोजी तुमा को गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि जो इस पुलिस अफसर ने किया वो अस्वीकार्य है लेकिन एक की सजा सबको क्यों दी जाए। उन्होंने याद दिलाया कि पुलिस फोर्स का उद्देश्य देश और जनता की सुरक्षा करना है। प्रधानमंत्री के बयान का एक अंश पेश है।
0: C'est aussi pas le Mauricien, comme vous autres. Vous êtes dans la famille, pareil comme vous autres. Vous êtes dans les enfants, vous êtes dans les proches. Oui, et non, haine la police qui fait commettre un acte impardonnable. Mais nous ne sommes pas capables de rendre toute la police Maurice responsable. La police, elle est au service de la population. Elle n'est pas là pour faire des ordres, elle est là pour assurer la sécurité de chaque Mauricien. Nous pouvons identifier un incendiaire, un démon qui peut agir contre l'intérêt de nos pays. Et je pour bizin répondre. Du monde qui ne fait pas un acte illégal pour subir une conséquence bien lourde de cette action antipatriotique méritée.
1: सरकारी नेता ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अफवाहों से बचने की मांग की जो डर और दहशत के साथ साथ देश में तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने प्रेस वालों से जानकारियों की विश्वसनीयता की जांच करने के बाद ही प्रसारण करने की अपील की और कहा कि जानकारी देने वालों की जिम्मेदारी समाज की रक्षा करना भी है। एक बार फिर प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
0: Qu'ils ont vérifié l'information qu'ils ont diffusée. La presse a un rôle important à jouer pour maintenir la paix. Mais liberté d'expression, pas veut dire aux propages fausses nouvelles. Mais aussi lancer l'appel à tout bande qui peut exprimer sa situation là, la radio ou bien les réseaux sociaux, que les politiques ou bande observateur. Moi, j'invite à mesurer la gravité de ce propos et réfléchir bien aux bonnes conséquences. C'est vous de l'avoir plutôt pour propager la paix et la sérénité. Moi, tant que chacun exerce sa liberté d'expression avec discernement et dans le respect de la loi.
1: आज दूसरे दिन के लिए देश के सभी निजी और सार्वजनिक पूर्व प्राथमिक प्राथमिक माध्यमिक स्कूल सेंट स्कूल उच्च शिक्षा संस्थाएं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी MITD मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और डे केयर सेंटर यानी नर्सरीज बंद रखे जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया। आज के लिए निर्धारित परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट और हायर स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं आज मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा में निर्धारित समय पर की जाएंगी। इन परीक्षाओं में भाग लेने वालों को निर्धारित समय पर परीक्षाएं देनी होंगी। पियर्सन एरेक्सल की परीक्षाएं भी जारी रखी जा रही हैं।

0: मेट्रो सेवा ठप, स्कूल बंद, लेकिन एससी और एचएससी की परीक्षाएं जारी। बुधवार को लेकर जानने योग्य ये हैं कुछ अहम बातें। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण उपवाद है एससी और एचएससी की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। परिवहन सेवाओं की बात करें तो बस सामान्य रूप से चलेंगी, लेकिन मेट्रो एक्सप्रेस सेवा पूरी तरह ठप है। भारी नुकसान के कारण आज कोई भी ट्रैम नहीं चलेगी और पूरे सप्ताह मेट्रो सेवा बंद रहने की संभावना है। निजी क्षेत्र में कंपनियों और कर्मचारियों की निगाहें अब बिजनेस मॉरिशस की सिफारिशों पर टिकी हैं, जिनकी घोषणा अगले कुछ मिनटों में होने की उम्मीद है। वहीं आज शाम एक बार फिर कर्फ्यू लागू करने के संबंध में अंतिम निर्णय दोपहर बाद तक लिया जाएगा, जहां दिन के 2:30 बजे एक कैबिनेट बैठक निर्धारित है। एक ऐसा गुस्सा जो लंबे समय से लोगों के मन में सुलग रहा था और आखिरकार अब फूट गया। समाजशास्त्री राज संतु के अनुसार मॉरिशस में मौजूदा घटनाएं आबादी के एक वर्ग की निराशा और हताशा को दर्शाती हैं। इस स्थिति के माध्यम से लोग अपने भीतर जमा असंतोष को जाहिर कर रहे हैं। सुनते हैं समाजशास्त्री राज संतु को, उनसे बात की हमारी सहयोगी शबनी जुजिया ने।
1: Entry social développé avec beaucoup de facteurs pour vous dire une frustration qui m'a été. Vous êtes plus en frustration, vous êtes en plusieurs façons de faire dit. Vous êtes cause de dommage avant du bien pays, comme on dit, government property, public property, private enterprise property, tout ça là. Tout le temps, vous êtes contrôlé ça. Pas de laisser à l'intention. Parce que tout le temps, nous disons, aucune divergence, l'idée, une divergence dans la façon une société peut rouler, besoin d'un dialogue là, besoin d'une communication exactement qui peut arriver, qui pas pour arriver, tout ça. Là, le mot peut trouver pour dire que descendre peut aller carrément vers conflit, carrément vers violence. Bien capable d'éviter ça, bonne violence, ça, tout ça. Bonne représentant dans le gouvernement, bonne représentant dans le secteur privé, bonne représentant des NGO. On a besoin de moi expliquer comment dire qu'il est capable de cause au bandit, capable de cause au public, capable de répondre à ce qui est l'attente été.
0: एलोजी तुमा की स्थिति को लेकर कल स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने यह अच्छी खबर सुनाई कि उनकी हालत में सुधार है। 7 घंटों की जटिल सर्जरी के अंतर्गत उसके स्पाइन से गोली निकाली जा सकी और कुछ घंटों में उन्हें होश आया। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार उनके हाथ पैर सब सही सलामत हैं। इस प्रेस सम्मेलन में मौजूद डॉक्टर उमेश श्यामलाल ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए भारतीय टीम एक पूरा ऑपरेशन थिएटर साथ लाई थी। इस टीम में ENT, न्यूरोसर्जन्स, एनेस्थीसिस्ट, नर्सेस आदि शामिल हैं। ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: 7 घंटे तक ऑपरेशन चला एक जटिल सर्जरी, जिसमें मॉरिशस और भारत के 13 विशेषज्ञों की टीम ने भाग लिया। कॉलिव्यू में गोली लगने से घायल हुई एलोजी तुमा का जीतू अस्पताल में इलाज किया गया। भारत से विशेष रूप से आए 6 विशेषज्ञ अपने साथ आवश्यक चिकित्सा उपकरण भी लाए थे। उन्होंने 7 मॉरिशन विशेषज्ञों के साथ मिलकर ऑपरेशन किया। डॉक्टर श्यामलाल कहते हैं, जीतू अस्पताल में एक खास उपकरण है, एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। इसी के जरिए सटीकता से देखा गया कि गोली कहाँ है। अंत में इसी उपकरण की मदद से उसे पकड़ कर बाहर निकाला गया। 7 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं। भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खंडेलवाल कहते हैं, आज दवाइयां बंद की गई, मरीज के सभी परीक्षण उत्साहजनक हैं, वो होश में हैं और बहुत जल्द वेंटिलेटर भी हटा दिया जाएगा।
3: एंड वेरी सून आवर प्लान इज टू रिमूव द वेंटिलेटर एंड मेक हर मोबिलाइज।
2: ये सर्जरी मॉरिशस और भारत की चिकित्सा टीमों के बीच सहयोग का एक उदाहरण है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने इस संयुक्त प्रयास की सराहना की। ये ऑपरेशन 100% सफल रहा। सभी डॉक्टरों और उन सभी लोगों को जिन्होंने इसमें भाग लिया धन्यवाद देते
3: हैं।
2: एलोजी तुमा के परिवार के लिए ये खबर

0: उम्मीद लेकर आई हैं। पिछले कई दिनों से वे चिंता और बेचैनी के दौर से गुजर रहे थे। उसमें सुधार आया है, उसने हमें देखा और हमें पहचाना भी, अपनी माँ का हाथ भी पकड़ा। हमारे लिए ये राहत की बात है। जोनाथन तोमा कहते हैं, अब मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से देख सकूंगा। हमने उसे ठीक करने के लिए संघर्ष किया है। हालांकि शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। एलोजी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उनकी सेहत में सुधार का आकलन करने और आगे के इलाज की दिशा तय करने के लिए अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण होंगे।
1: सीडब्ल्यूए के कार्यालयों के बाहर लंबी कतारों के बाद अब वाटर टैंक एंड वाटर पंप स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सीडब्ल्यूए के वेबसाइट पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोमवार शाम से शुरू हो चुका है। सभी उपनाम के पहले अक्षर की परवाह किए बिना ए से जेड तक किसी भी दिन आवेदन जमा कर सकते हैं। आईसीटी मंत्रालय ने लोगों से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की अपील की, ताकि अनावश्यक आवाजाही और कार्यालयों के काउंटर पर लंबे समय तक आपको इंतजार ना करना पड़े। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। उनकी तेजस्वी आभा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करती है। मां कुष्मांडा की पूजा सुख समृद्धि, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जिला विस्तार रिपोर्ट में।

0: माँ दुर्गा की नौ स्वरूपों में चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जब चारों ओर अंधकार था और सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है।
1: तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
0: माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और करुणामयी है। उनकी आठ भुजाएं हैं, जिनमें वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके आठ हाथों के कारण उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। सिंह पर सवार माँ अपने भक्तों को साहस, शक्ति, आरोग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई आशाओं का संचार होता है। वे अपने भक्तों के दुखों को दूर करके उनके जीवन में प्रकाश और खुशहाली लाने वाली देवी हैं।

0: उनकी कृपा से मनुष्य कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर भक्त माँ कुष्मांडा के चरणों में श्रद्धा और भक्ति के पुष्प अर्पित करते हैं तथा उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे जीवन से अज्ञान, भय और नकारात्मकता के अंधकार को दूर कर ज्ञान, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं।
1: विदेश की खबरों में वैटिकन की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पोपलियो 14 को फेफड़ों के कैंसर यानी लंग का कैंसर हुआ है। हालांकि उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए की गई सर्जरी सफल रही। 71 साल के पोप की मंगलवार को रोम के अस्पताल में लगभग 90 मिनट तक सर्जरी चली। वैटिकन के अनुसार सर्जरी सफल रही और इस दौरान कोई जटिलता सामने नहीं आई है। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। मस्करीन्स के दक्षिण में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज दिन के दौरान धूप खिली रहेगी, तड़के सुबह और रात तक ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समंदर में न जाने की सलाह है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सुबह सूर्योदय 5:40 पर, शाम को सूर्यास्त 6:11 पर होगा।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर यूसुफ का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
0: शोक समाचार सुनिए। मकनामा लेन पेटी ट्रिविया में इक्यानवे साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हवंती राम सिंह, श्रीमती हवंती राम सिंह पैदाशी नाम रामेसर और जो सुमित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 10 बजे उनके बेटे चंद्रदेव राम सिंह के मकान मकनामा लेन पिचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। शकाल लेन रोसबेल में साठ साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री नारायण लाल बिहारी जो मनोज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 10:30 बजे उनके मकान शकाल लेन रोसबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिशानी रोसबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10:30 AM। ब्रांच रोड लालमाटी में 53 साल की 53 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रेणुका ने ओ पैदाशी नाम गोपल और जो रेणू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके पति विनय ने ओ के मकान ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। लापोर्ट प्रोविडेंस पोस्ट डे फ्लैक में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रंबावती सुकन जो लीलू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके मकान लापोर्ट प्रोविडेंस पोस्ट डे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। काहोला लियान सुल्फेगिनो नंबर तीन वाकवा में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती धनवंती बालूराम पैदाशी नाम लड़का और जो शीला साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके मकान काहोला लियान सुल्फेगिनो नंबर तीन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। शिवाजी लेन मेलहोज में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्र सेन नाथिया जो गौसों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 10:30 बजे उनकी माँ रानू नाथिया के मकान शिवाजी लेन मेलहोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय ब्लॉन्श की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10:30 AM। कौलाबू मोताईलोंग में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कृष्णावती राम प्रसाद पैदाशी नाम महावीर सिंह और जो चिफिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे आतिश राम प्रसाद के मकान कौलाबू मोताईलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैफगया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे इस देश में प्यार ही प्यार हो, यही हमारी कामना है, आशा है। और यहाँ पर स्वागत है इस वेडनेसडे 14th of October। जय माता दी। नवरात्रि के पवित्र चौथे दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम मॉर्निंग बीट तो करते ही है, लेकिन वी जस्ट ऑब्जर्व द क्वालिटीज ऑफ आवर दुर्गा जी। यस, दुर्गा माँ की ये जो हमारी चौथी रूप है, आज माँ कुष्मांडा को हम ध्यान करेंगे। और आप तो जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड में प्रकाश और ऊर्जा का संचार हुआ। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि नवदुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके 8 भुजाएं हैं। माँ कुष्मांडा को उनके दिव्य रूप, दिव्य ऊर्जा, साहस और सृजन शक्ति की पूजा किया जाता है उनकी। और उनकी जो पूजा में है, हमें याद दिलाता है कि अंधेरे से अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। वैसे इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे शो को। जी हाँ, शुरुआत हुआ है फॉर योर मॉर्निंग बीट विद मी मनीषमा। दिल में हमेशा पॉजिटिविटी रख कर इसी जो 9 दिन हैं, 10 दिन हैं, ये हमारे लिए और हमारी जो सोल है उसके क्लेंजिंग के लिए होता है। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि सारे जो लोग अभी उठे हैं, आई जस्ट वॉन्ट यू टू कीप पॉजिटिव एंड बी वेरी हम्बल, बी वेरी यू नो माइंडफुल अबाउट एवरीथिंग। ऑल्सो जो दिन हमको मिला है उसको अच्छे तरीके से कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं, हमारे विचारों पर निर्भर होता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन योर RM2 रेडियो मासी। इट्स योर मॉर्निंग बीट विद मी मनीषमा। छोटा सा ब्रेक, देन शायराना कमिंग अप फॉर यू दावत देश मूवी से।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: Soso, je sais ce qu'on va faire ce week-end.
4: Être bien sage.
3: Oui, mais aussi sauter sur des trampolines, plonger dans des piscines à boules et dévaler des toboggans lumineux. Parce que du 1er septembre au 31 décembre chez KFC, on reçoit un ticket pour Funtopia ou Gravity Max à Tribeca dans notre Kiki Fun Meal.
4: Ah ben, faudra être sage alors.
5: Un total de 107 millions de roupies en jeu ce soir. Environ 37 millions de roupies au Loto Plus et approximativement 70 millions de roupies au Loto. 37 millions de roupies au Loto Plus et 70 millions de roupies au Loto. Vous pouvez rêver très très grand. Mais n'oubliez pas, chaque petit geste compte. Chaque goutte d'eau économisée, c'est tout le monde qui gagne.
6: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: चलिए जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ 7:13 हुए हैं एक छोटा सा ब्रेक देन विल बी बैक
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
3: और केजी क्लासिक प्योगी विशेस ऑल डिवोटीज अप्पा इस गोविंदन और केजी क्लासिक प्योगी अकंपेनिंग यू इन योर प्रेयर्स सिंस 1932 एन इंडियन क्लासिक प्योगी इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय RR रैपिड सर्विसेज लिमिटेड
1: RM2
2: रेडियो मस्ती

0: टू रेडियो मस्ती।
1: एगो यात्रा के मतलब है नवा अनुभव, अपन संगे वक्त बिताई के और हर पल के मजा ले के, और कबो कबो एगो बेहतरीन बिजनेस अवसर के फाइनलाइज करे के भी। उहे खातिर कोनो भी अनजान परेशानी के इस सब खास पल के मजा खराब नहीं होई दी है। सिकुम के स्पेशली डिजाइन ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान पर भरोसा करे, जिकर से अपन यात्रा बेफिक्र होके सकबा करे। यात्रा के पूरा मजा ली है सिकुम तोहर ध्यान रखी। हमनी से संपर्क करे या हमनी से भेंट करे खातिर sikkim.mu पर जाई है। नियम आ शर्त लागू बाटे। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
3: रेडियो मस्ती।
4: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के।

सांसों ने बांधी है रब से ने वादा किया क्या बात है इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द स्टार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग अगठिया अनदर वन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक्स आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर हूं मैं मनीषमा वैसे एक बात तो थी वादा कीजिए अपने आप से कि आप हमेशा यू विल गिव योर बेस्ट वादा कीजिए कि आप हमेशा उठेंगे तो जिंदगी के अच्छे पहलू को आप परखेंगे और अपने आप पर भरोसा रखेंगे कि आप कामयाब रहेंगे जरूर और अपनी आपकी छोटी छोटी सी कामयाबी में हम साथ निभाना चाहते हैं यहाँ पर ये है मैसेजेस का नंबर 5499124 पर खुश रहिएगा काम रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव

0: चिकन फ्रॉम द मूवी एंटरटेनमेंट फॉर यू। आशा करती हूँ कि आप एंजॉय करें हमारी सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स को। वैसे अगर ड्राइव कर रहे हैं तो बेशक बहुत सारे लोग अभी रस्तों पर हैं, तो आपको कहना चाहते हैं ड्राइव सेफ, पेशेंस, धैर्य और कोशिश, बी कोशिश ऑन द रोड। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, देन वी विल बी बैक विद अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग।
1: RM2
2: Radio Musti.
3: You, qui l'antenne t'es bien installé? Forget ça! Alpon de l'abonnement Canal Plus, app only! Zéro l'antenne, zéro décodeur, zéro installation! Abonne-toi, download to app Canal Plus, extreme des suites! EasyNet, Premier League, film, série, Bollywood, Lotus Smart TV, smartphone, tablette, stream pour tout man! En plus, l'immense avec tout réseau internet! Canal Plus, app only, rendez-vous en Canal Plus Store et chez MTEL. Service accessible sur le site internet canalplus.com ou via l'application Canal+. Sous réserve de souscrire à une offre Canal+, soumise à conditions valables à Maurice. Voir conditions techniques d'accès sur canalplus.com.
4: Un total de 107 millions de roupies en jeu ce soir. Environ 37 millions de roupies au Loto Plus et approximativement 70 millions de roupies au Loto. 37 millions de roupies au Loto Plus et 70 millions de roupies au Loto. Vous pouvez rêver très très grand. Mais n'oubliez pas, chaque petit geste compte. Chaque goutte d'eau économisée, c'est tout le monde qui gagne.
5: Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: कमांडो मूवी से लिया गया ये गाना तेरे दिल में क्या है अरमान मलिक की आवाज में भी के लिए बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में 7:48 हुए हैं
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
2: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स
0: A very good morning to you, Arvind ji.
4: Good morning, Apko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. Premier League ho ya Champions League, Manchester United, dono mein puri tarah beasar sabit ho raha hai. Kharab performance ka silsila jari hai. Pichle 5 matchon mein ek bhi jeet nahi. इस बार एथलेटिको मैड्रिड ने 2-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड को सुधारा मैच के पहले मिनट में ही पाब्लो बार्रियोस का गोल फिर सेकंड हाफ में योगो को मिला रेड कार्ड 5 मिनट बाद लुकमान ने एथलेटिको मैड्रिड का दूसरा गोल स्कोर किया दूसरी ओर आर्सेनल आराम से जीत पाया द गनर्स 3-0 को लिल को लिल गए तीनों गोल सेकंड हाफ में टिम्बर एजे और साका के जरिए अन्य मैचों में स्पोर्टिंग ने एवेजा कर लॉन्स को 2-0 से हराया साबा एफकी 2 स्लाविया प्राग 0 गलातासराय 1 बार्सिलोना 4 कांसेलो लोपेज गोदन और अदेयेमी का एक ही गोल इंटर मिलान की हार हुई होम मैदान में क्लब ब्रुज ने उसे 4-3 से हराया फिर RB Leipzig 1 PSV Eindhoven 0 विकिंग 3 बायर्न म्यूनिख 3 इसमें हैरी केन का डबल जाज का एक गोल विलारियल 3 नापोली 1 अभी के लिए बार्सिलोना स्पोर्टिंग और आर्सेनल के पास दो मैचों के बाद 6 अंक हैं आज फेयेनूर्ड वर्सेस कोमो और ऑस्ट्रिया की लास्क टीम लिवरपूल का स्वागत करेगी 8:45 किक ऑफ यानी 8:45 ये दोनों मैच खेले जाएंगे अन्य मैच 11:00 अस्टन विला फेनेरबाचे बोडो ग्लिंट बोरुशा डॉर्टमुंड मैनचेस्टर सिटी पेरिस सेंट जर्मेन रियल मैड्रिड एफसी पोर्टो एएस रोमा रियल मैड्रिड शाख्तार डोनेत्स्क एके एथेंस स्लोवान वर्सेस स्टुटगार्ट इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में भी कल कई मैच खेले गए ब्रिस्टल 0 ब्लैकबर्न 1 बर्नले 2 चार्ल्टन 2 कार्डिफ 5 वाटफोर्ड 1 मिलवॉल 0 स्वानसी 1 वुल्व्स 1 बोल्टन 3 ब्रेक्सम 1 वेस्ट ब्रॉमविच आल्बियन 2 बर्मिंगहम 4 प्रेस्टन 0 स्टोक 2 मिडल्सब्रो 3 टेनिस एटीपी शंघाई मास्टर्स में राउंड ऑफ 16 में अलेक्जेंडर वेरेव ने बुब्लिच को हराया 7-6, 4-6 और 7-6 से अन्य मैचों में डेमिनोर ग्रेया फोकिना जीत पाए आज मेडवेदेव

0: Dave Kamukabla, City Passé, Paul versus Bergs, Rude versus Og Aliassime और Van de Zandschulp जोधा के खिलाफ खेलेगा। क्रिकेट में टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। 5 मैचों के इस T20 सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, प्रीमियर लीग में तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पहिए से हवा निकल रही है, लेकिन चैंपियंस लीग में लगता है पहिए हैं ही नहीं। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड नाजुक है, चैंपियंस लीग में उसकी हार हुई, जबकि आर्सेनल आराम से अपना मैच जीत गया। आज पेरिस सेंट जर्मेन क्या करेगा मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ, लिवरपूल क्या करेगा लास्क के खिलाफ, ये देखा जाएगा। हैव अ नाइस टाइम अहेड, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद जी फॉर दी अपडेट्स। वैसे सारे जो लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं, वैसे अपने पहियों पर ध्यान दो। और यहाँ पर हम बढ़ते हैं विद अ सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड अ वंडरफुल मॉर्निंग गोज़ आउट टू ईच एंड एवरीबॉडी ट्यूनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musty.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
1: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: जो हुआ कल उसे भूल जाइए, just let it be and just concentrate on tomorrow and आज. And today is a beautiful day. Today is another chance to make it right and to make it better. It depends on you, ladies and gentlemen. अभी के लिए थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे भोजपुरी के समाचारों की ओर. तो ही दिस दा, here we go, बहुत बांग्ला मूवी से.
1: RM2 Radio Masti.

सबके के नमस्ते संक्षिप्त समाचार सुना जा सख्त निगरानी में शुरू भेल रात जहां शांति भंग होय के जस्ती देरी नहीं लगल काल रात देश के कई गो इलाका में हिंसा के कई गो घटना पेशल कर्फ्यू के बावजूद कई जना सीमा पर ही उतर गयलन सब कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाए में जस्ती आसानी भल बखेर इ बारी हिंसा जुन बा ओ केंद्र के छोड़ के पश्चिम इलाका के छोड़ के पूरब अरे दक्षिण बगल वो फैल गल उत्तरी इलाका गुडलैंड से वो में देर रात लेकर अधिकारी लोग इस प्रदर्शन के काबू में करे के कोशिश में लगल रहलन सा

Bambou, Sainte-Croix, Goodlands, Mayburg, Baie du Tombeau, Bombou Mariners, Supermarket में लूट होल, Cascavel Mall के कई गो दुकान में चोरी करल गल, चार जना के गिरफ्तार करल गल, जिनमें दो गो नाबालिग बाटे। मेबर्ग में एगो कारी में आग लगा देवल गल, सेंट

0: कर्फ्यू हटा देवल गल काल रात 8:00 पर ई लागू हो रहा देश के कई गो इलाका में हिंसा के बाद ई फैसला लेवल गल आज सांझ के 2:30 2:30 पर ही कैबिनेट के आपात बैठक लगावल जाए जिसमें स्थिति के जायजा लेवल जा सकी आरी कौन कदम उठाए के बाटे ई पर विचार करल जाए के सकी। काल देश के संबोधित अमन बयान में प्रधानमंत्री बोलन की जानकारी के मुताबिक नफरत की भावना संगे एगो विशेष जुन गुट बाटे ओ ई घटना खातिर जिम्मेदार बाटे। सरकारी नेता सबको इसे शांति आरी एकता बनाए के मांग करलन। मेट्रो सेवा ठप बाटे, स्कूल बंद बाटे, SHSE की परीक्षा जारी। बुध के लेके जाने योग्य ई कुछ बात शिक्षा क्षेत्र के बात में त आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर लेक सब स्कूल बंद बाटे, विश्वविद्यालय के पढ़ाई ऑनलाइन होवत बाटे। हालांकि एगो महत्वपूर्ण अपवाद बाटे SCRE HSE की परीक्षा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार करल जात बा। परिवहन सेवा के बात कईला जत बस सामान्य रूप से चलत बाटे, बखेर मेट्रो एक्सप्रेस सेवा पूरा तरह से रुक गल ह। भारी नुकसान के कारण आज कोनो ट्राम नहीं चलत बाटे, आरी पूरा हफ्ता लेक मेट्रो सेवा के बंद रहे के संभावनाओं बाटे। निजी क्षेत्र में बिजनेस मॉरिशस बगल से जारी कम्युनिके में सब गतिविधि सामान्य रूप से शुरू करे के सिफारिश देवल गल है। काल रात के हिंसा के बावजूद कर्फ्यू हटावल जाएला के बाद बस सेवा शुरू होल सीमा सफा रहल जोन कारण से फैसला लेवल गल। बिजनेस मॉरिशस सब कंपनी के जिम्मेदार लोग से मांग करत बाटे कि हालात के ध्यान में रख के काम के योजना तैयार करे के चाही, काहे कि स्कूल आरी नर्सरीज बंद बाटे। स्थिति पर करीब से नजर रखल जात बाटे, जरूरत पड़ला परी नवा जानकारी देवल जाए। CWA के कार्यालय के बाहर लंबा कतार के बाद अब वाटर टैंक एंड वाटर पंप स्कीम खातिर ऑनलाइन आवेदन करल जात बा। CWA के वेबसाइट पर ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काल लैंडी सांझ के शुरू भेल। सब उपनाम के पहला अक्षर के परिवार लोग यानी A-Z लेक सब कोई सक्यन से अपन आवेदन जमा करे। नवरात्रि के चौथा दिन आज माँ दुर्गा के चौथा स्वरूप माता कुष्मांडा के आराधना करल जात बाटे। मान्यता बाटे कि माँ कुष्मांडा अपन दिव्य मुस्कान से सृष्टि के रचना कर ले रहलन, उनकर तेजस्वी आभा पूरा ब्रह्मांड के प्रकाश देवेला। माँ कुष्मांडा के पूजा सुख समृद्धि आरोग्य आणि सकारात्मक ऊर्जा खातिर करल जाला। विदेश में वाटिकान के ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पोप लियो 14 के लंग कैंसर भल बाटे। हालांकि उनका दाहिया फेफड़ा के नीचे होला हिस्सा के निकाले खातिर सर्जरी करल गल। 71 बरिस के पोप के मंगल के रोम के अस्पताल में लगभग 90 मिनट लेक सर्जरी करल गल। वाटिकान के अनुसार सर्जरी सफल रहल। ई रहल संक्षिप्त समाचार, तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने की आज्ञा दिया, नमस्ते।
1: On NBC Play and NBC.
2: Morning beat.
3: Oh God! One more remix.
2: A good beat for your morning show.
4: RM2 Radio Musty in the mix.

0: कभी सोचा है क्या क्या खूबसूरत गाना है वैसे दिस वन गोज़ आउट टू ऑल दोज अर्ली वेकर्स जो हमेशा उठते हैं हर रोज़ नई उम्मीद के साथ हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और उनको पॉजिटिव करवाने की जो हमारी कोशिश है कभी कभी नाकामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि वे आर ऑलरेडी पॉजिटिव पीपल. ये जो सूरज की किरणें कभी आपने सोचा है कि विशाल ब्रह्मांड या आसमान चमकते सितारे या सुबह के उगता हुआ ये जो हमारा सूरज है हमें क्या सिखाता है कि यूनिवर्स रिमाइंड अस दैट लाइफ इज़ कंस्टेंटली चेंजिंग. रात के बाद सवेरा, पतझड़ के बाद नए पत्ते और मुश्किल समय के बाद हम कह सकते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की जो मौका है हमको दे देती है हर रोज़. आँखें खुली है, आप दुरुस्त हो, आप स्माइल कर पा रहे हो, आप स्वस्थ हो, तो यही सबसे बड़ी बात है. चलिए अभी के लिए मौसम का हाल.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं. मस्करीन्स के दक्षिण में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान धूप खिली रहेगी. मात्र सुबह ऊंचाइयों पर कुछ हल्के बादल घिरा सकते हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है. रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर बारिश होगी. हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समंदर में न जाने की सलाह है. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25. तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह सूर्योदय 5:40 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 6:11 पर होगा.
3: Your weather forecast on RM2.
1: Radio.

0: participants. Allô, rendez-vous les 31 octobre. SBM Trail, pas rate ça!
1: Moments that matter with Seacom. फ्लाइट में देरी होल, सूटकेस बिलागल, कैंसिलेशन, मेडिकल इमरजेंसी, सफर में ऐसा अनेक अनिश्चित स्थिति भी आ सकेला। यही खातिर जरूरी है कि आप अपन जरूरत और उम्मीद के मुताबिक सही ट्रैवल इंश्योरेंस के चुनिया। सिकम के ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान के संगे आप बेफिक्र होके सफर के मजा ले सकबा। ई प्लान पहले से ही कई गो मॉरिशन के चुनला पर उनकरा सफर में रक्षा करता। तोहरा तोहर पॉलिसी के शर्त के मुताबिक 2400 घंटा सप्ताह के सातों दिन मेडिकल सहायता मिलेला। साथ ही मेडिकल खर्चा, यात्रा कैंसिलेशन या इंटरप्शन, फ्लाइट में देरी, आज सूटकेस मिले में देरी या बिलाई के स्थिति में सुरक्षा। काहे की एगो सुखद सफर डिपार्चर से बहुत आगे शुरू हो जाला। उहे खातिर कुछ भी किस्मत पर न छोड़िया, आज जिंदगी के उस सब खास पल के पूरा लुफ्त उठाइया। जस्ट जानकारी खातिर हमनी के एगो प्रतिनिधि से संपर्क कर या sicom.mu पर जाइह। शर्त और नियम लागू है। सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: It was moments that matter with Sicom. RM2
3: Radio Musti.

0: तो सब अच्छा है, क्या बात है। कोई आपकी जिंदगी में हो जो उनके ऑरा से पता चल जाते हैं वो लोग पहुंचे गए हैं यहाँ पर। वैसे यू नो यू जस्ट बिकम व्हाट यू थिंक, व्हाट यू आप जो ग्रहण करते हैं। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू ईट, इट्स व्हाट अबाउट यू थिंक ऑल्सो। जब आप सही सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, कि आपकी जो ऑरा है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाते हैं। सो ऑल दोज जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड यू नो दैट पर्सन हु इज़ इन योर लाइफ, उनके बस एक मैसेज के साथ सब ठीक हो जाता है। एक जैसे वाइब के साथ वो आ जाते हैं तो सब ठीक हो जाता है। वैसे दिस वन गोज़ आउट टू ऑल योर कलीग्स, ऑल दोज जो कि काम पर जा रहे हैं। वैसे दिस वन गोज़ आउट टू यू ऑल्सो, बों को ख्वाहिश एंड ऑल द बेस्ट गोज़ आउट टू ऑल दोज जो कि आज एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं। आई नो दैट सो मेनी पीपल, उनके सारे जो छात्र हैं अभी पहुँच ही गए एग्ज़ाम्स की जो रूम में है। वैसे आई जस्ट विश कि उनके मन में शांति हो और दे कैन कंसनट्रेट ऑल वेल एंड डू well in their exams. अभी के लिए बढ़ते हैं with another songs. यहाँ पर हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से अच्छे बढ़िया बढ़िया गाने हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप खुश हो तो हम भी डबल खुश हो जाते हैं। खासियत for you. It's a beautiful song. Here we go.
1: RM2 Radio Masti.

0: चलिए 8:00 अभी 31 मिनट हुए, स्पोर्ट्स रिकैप के लिए बढ़ते हैं।
1: स्पोर्ट्स न्यूज
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: अगेन गुड मॉर्निंग टू यू फॉर ऑल दोस हु हैव मिस्ड द मॉर्निंग स्पोर्ट्स अपडेट्स। आप यहां पर आप सुन सकते हैं 8:30 बजे के बाद, यू नो।

0: every day it comes with best of news. Here we go.
1: Good morning, Apko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. Premier League ho ya Champions League, Manchester United dono mein puri tarah beasar sabit ho raha hai. Kharab performance ka silsila jari hai. पिछले पांच मैचों में एक भी जीत नहीं. इस बार एथलेटिको मैड्रिड ने 2-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड को सुधारा. मैच के पहले मिनट में ही पाब्लो बार्रियोस का गोल, फिर सेकंड हाफ में यूगो को मिला रेड कार्ड. पांच मिनट बाद लुकमान ने एथलेटिको मैड्रिड का दूसरा गोल स्कोर किया. दूसरी ओर आर्सेनल आराम से जीत पाया. द गनर्स 3-0 को लिल को लिल गए. तीनों गोल सेकंड हाफ में टिम्बर, एजे और साका के जरिए. अन्य मैचों में स्पोर्टिंग ने एवेजा कर लॉन्स को 2-0 से हराया. साबा एफ की 2, स्लाविया प्राग 0, गलातासराय 1, बार्सिलोना 4, कांसेलो, लोपेज, गोदन और अदेयेमी का एक ही गोल. इंटर मिलान की हार हुई होम मैदान में. क्लब ब्रुज ने उसे 4-3 से हराया. फिर आरबी लाइप्ज़िग 1, पीएसवी आइंडहोवन 0, विकिंग 3, बायर्न म्यूनिख 3. इसमें हैरी केन का डबल, जाज का एक गोल. विलारियल 3, नापोली 1. अभी के लिए बार्सिलोना, स्पोर्टिंग और आर्सेनल के पास दो मैचों के बाद 6 अंक हैं. आज फेयेनूर्ड वर्सेस कोमो और ऑस्ट्रिया की लास्क टीम लिवरपूल का स्वागत करेगी. 8:45 किक ऑफ यानी 8:45 ये दोनों मैच खेले जाएंगे. अन्य मैच 11:00 अस्टन विला फेनेरबाचे, बोडो ग्लिंट बोरुशा डॉर्टमुंड, मैनचेस्टर सिटी पेरिस सेंट जर्मेन, रियल मैड्रिड एफसी पोर्टो, एएस रोमा रियल मैड्रिड, शाख्तार डोनेत्स्क एके एथेंस, स्लोवान वर्सेस स्टुटगार्ट. इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में भी कल कई मैच खेले गए. ब्रिस्टल 0, ब्लैकबर्न 1, बर्नले 2, चार्ल्टन 2, कार्डिफ 5, वाटफोर्ड 1, मिलवॉल 0, स्वानसी 1, वुल्व्स 1, बोल्टन 3, ब्रेक्सम 1, वेस्ट ब्रॉमविच आल्बियन 2, बर्मिंगम 4, प्रेस्टन 0, स्टोक 2, मिडल्सब्रो 3. टेनिस एटीपी शंघाई मास्टर्स में राउंड ऑफ 16 में अलेक्जेंडर वेरेव ने बुब्लिच को हराया 7-6, 4-6 और 7-6 से. अन्य मैचों में डेमिनोर ग्रेया फोकिना जीत पाए. आज मेदवेदेव का मुकाबला सिट्सिपास से, पोल वर्सेस बर्ग्स, रूड वर्सेस उग अलियासिमे और वन दे जंसक्लॉप जोडा के खिलाफ खेलेगा. क्रिकेट में टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा. पांच मैचों के इस T20 सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है. सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें. प्रीमियर लीग में तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पहिए से हवा निकल रही है, लेकिन चैंपियंस लीग में लगता है पहिए हैं ही नहीं. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड नाजुक है. चैंपियंस लीग में उसकी हार हुई, जबकि आर्सेनल आराम से अपना मैच जीत गया. आज पेरिस सेंट जर्मेन क्या करेगा मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ, लिवरपूल क्या करेगा लास्क के खिलाफ, ये देखा जाएगा. हैव अ नाइस टाइम अहेड. टेक केयर. बाय बाय.
0: वेल, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स अरविंद जी.
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
0: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
1: Milo, libère ta force.
0: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
1: Milo, libère ta force.
0: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: आठ बजकर 40 मिनट हुए हैं आप जुड़े हैं आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ चल लीजिए बढ़ते हैं अबाउट योर कोट ऑफ द डे कहता है कि लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग जिंदगी साइकिल की तरह चलाना ही जैसी होती है अपने संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए या एल्बर्ट आइंस्टाइन करते हैं डियर लिसनर्स अल्बर्ट आइंस्टाइन हमें यह बहुत ही खूबसूरत मैसेज देते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए हमें रुकना नहीं चाहिए कभी हम जीतेंगे कभी हारेंगे लेकिन हर एक्सपीरियंस हमें कुछ नया सिखाता है ट्रस्ट द जर्नी ऑफ लाइफ स्टे ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव वर्क टूवर्ड्स व्हाट यू वांट एंड हैव पेशेंस विद व्हाट टेक्स टाइम टाइम लीजिए ज़रूर दीजिए धैर्य रखिएगा आज अपने दिल में ग्रैटिट्यूड अपने मन में पीस और अपनी सोच में पॉजिटिविटी लेकर आगे बढ़िए जरूर बिकॉज लाइफ इज नॉट हैविंग एवरीथिंग परफेक्ट यू नो दैट इट इज अबाउट फाइंडिंग होप मीनिंग ब्यूटी इवन इन इनपरफेक्ट मोमेंट्स सो विशिंग यू ऑल अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग फिल्ड विद पॉजिटिव थॉट्स पीसफुल एनर्जी एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज स्टे ब्लेस्ड And stay connected. RM2 Radio Mastic is at.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.

0: RM2 Radio Musti.
1: परदेसिया फॉर यू फ्रॉम सुंदरी मूवी से लिया गया ये गाना. बस थोड़ी देर में जाने का समय हो चलेगा. नीचे क्या गाइस.

0: Okay, good morning, 14th of October. आज है वेंसडे का दिन. Time check exactly 9 a.m. थोड़ी देर में संक्षिप्त समाचार. जब वक्त हो गया संक्षिप्त समाचार का, स्टूडियो में आ गई हैं याशना, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार.
1: नमस्कार विकास, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. सख्त निगरानी में शुरू हुई रात, जहां शांति भंग होने में ज़्यादा देर नहीं लगी. कल रात देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं पेश आई. कर्फ्यू के बावजूद भी लोग सड़कों पर उतर आए. कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाना ज़्यादा आसान रहा, लेकिन इस बार हिंसा केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों से निकलकर पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में फैल गई. उत्तरी इलाके गुडलैंड्स में भी देर रात तक अधिकारी इन प्रदर्शनों को काबू में करने की कोशिश में लगे रहे. बॉम्बू, सेंट क्वा, गुडलैंड्स, मेबर्ग, बेजुतोंबो, एक ही नज़ारा. सड़कों को बाधित किया गया, पहिए जलाए गए, दुकानें लूट ली गईं. बॉम्बू में विनर सुपरमार्केट में लूटपाट की खबर है. कस्कावेल मॉल की कई दुकानों में चोरी करने गए चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो नाबालिग शामिल थे. मेबर्ग में एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया. सेंट क्वा और बेजुतोंबो में संयम बनाने के लिए पुलिस को टियर गैस का प्रयोग करना पड़ा. काथोबोन में दो लोगों को मोलोटोव कॉकटेल के साथ पकड़ा गया. याद रहे कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को 5 साल कैद की सजा और ₹50,000 का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. मेट्रो सेवा ठप, स्कूल बंद, लेकिन एससी और एचएससी की परीक्षाएं जारी. बुधवार को लेकर जानने योग्य हैं ये कुछ बातें. शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक

तक सभी स्कूल बंद हैं, नर्सरीज बंद हैं, विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण अपवाद है, एससी और एचएससी की परीक्षाएं निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। परिवहन सेवाओं की बात करें तो बस सामान्य रूप से आज सुबह से चलने लगी, लेकिन मेट्रो एक्सप्रेस की सेवा ठप पड़ी हुई है। भारी नुकसान के कारण आज कोई भी ट्रैम नहीं चलेगी और पूरे

बताए जाने के बाद बस सेवाएं शुरू हुई, सड़कें भी साफ रहीं, जिस कारण से ये फैसला लिया गया। बिजनेस मॉरिशस ने सभी कंपनियों के जिम्मेदारों से मांग की है कि वे हालातों को समझें और काम की योजना तैयार करें, ताकि खासकर अब जब स्कूल और नर्सरीज भी बंद हैं, स्थिति पर करीब से नज़र रखी जा रही है, ज़रूरत पड़ने पर नई जानकारियाँ दी जाएंगी। CWA के कार्यालयों के बाहर लंबी कतारों के बाद अब वाटर टैंक एंड वाटर पंप स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। CWA के वेबसाइट पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोमवार शाम से शुरू हो चुका है। ये सभी उपनाम के पहले अक्षर की परवाह किए बिना यानी ए से जेड तक किसी भी दिन आवेदन जमा किया जा सकता है। ICT मंत्रालय ने लोगों से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की अपील की है। नवरात्रि के चौथे दिन आज माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। उनकी तेजस्वी आभा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान बनाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा सुख समृद्धि आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ के इस दिव्य स्वरूप को नमन किया जाता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। विदेश में वाटिकान की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पोप लियो 14 को लंग कैंसर हो गया है। हालांकि उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालकर सर्जरी की गई। 71 साल के पोप की मंगल को रोम के अस्पताल में लगभग 90 मिनट तक सर्जरी की गई। ये सर्जरी सफल रही। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आ गया दीजिए। नमस्कार।

0: चले ख्वाबों की दुनिया से निकलकर अभी हकीकत की दुनिया के साथ जुड़ गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मनीष मां आपका साथ दे रही थी। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। 9:13 तेरा क्या होगा, नहीं सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि राइट चॉइस ऑफ म्यूजिक आपके लिए वेटिंग कंटिन्यूस टिल 12।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: Dresse une plomberie dans l'ascenseur après une grosse journée de travail? Good time! Saute dans l'ascenseur et pèse direct au KFC! Finger licking good time!
3: With KFC, make it a finger licking good time!
4: Finger licking good! KFC!
1: RM2
5: Radio Musty.

Radio Musty. मॉर्निंग में ऐसे म्यूजिक के साथ शुरुआत होती है तो जिंदगी से मुलाकात होती है और फिर लगता है कि कुछ अलग ही हो रहा नहीं। Things start falling in place और आपको बताएं कि यही तो है मेरी प्लेस, यही तो मेरी जगह है, म्यूजिक की दुनिया। हेलो, वेलकम, गुड गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर में चलेंगे आपकी राशियों की तरफ। अब चलते हैं थोड़ी एनर्जी लेकर आगे अपने रास्ते।

0: your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: जैसा वक्त होगी हम चलें सितारों की चाल जानने के लिए और शुरुआत करते हैं हुए
2: एरीज मेष राशि।
1: मेष राशि आज प्रेम और रिश्तों के मामले में दिन काफी खुशनुमा रहने वाला है और प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। साथी के साथ बिताए छोटे छोटे पल भी आपको भीतर से खुशी देंगे। व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव जरूर आ सकते हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आज लिया गया कोई फैसला आगे चलकर लाभ दे सकता है।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज का दिन संतोष सफलता और अच्छी खबरों के साथ आगे बढ़ सकता है। व्यापार में कोई महत्वपूर्ण सौदा आपके पक्ष में आ सकता है जिससे आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा। आपकी मेहनत अब धीरे धीरे अपना परिणाम दिखा रही है। परिवार का सहयोग किसी बड़े फैसले खासकर घर या संपत्ति से जुड़े मामले के चक्कर में आपके लिए मददगार साबित होगा। समाज में आपके काम और प्रयास की चर्चा होगी।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: भाई आज आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो रचनात्मक सोच है, लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। कार्य क्षेत्र में नए विचारों की चर्चा हो सकती है और कला, लेखन, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों की विशेष पहचान बन सकती है। घर में किसी अतिथि के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज मन में कई तरह के सवाल और उलझने चल सकती हैं, इसलिए बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है लेकिन आपकी समझदारी और शांत व्यवहार में सबकी भलाई है। माँ से किया गया कोई पुराना वादा, आपको उसको पूरा करने का अवसर मिल सकता है।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम है उसको कर दियो। वैसे आपकी जो ऊर्जा है, आपका आत्मविश्वास है और उत्साह आपको आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण मदद करेगा। आपका एक साथ निभाएगा ऐसा कि आपको लगेगा कि ये तो महत्वपूर्ण भूमिका है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि सराहना हो सकती है, सम्मान मिल सकता है। निवेश से जुड़े मामले वो भी अच्छी परिस्थितियों में आएंगे। हालांकि फैसला सोच समझ कर लें। लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र से मुलाकात दिन को खास बना सकती है।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: भाई आपकी जो समझदारी है, सतर्कता है, आपको कई परेशानियों से बचा सकती है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। कोई पुराना अधूरा काम पूरा होने से मन को काफी प्रसन्नता महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी लापरवाही जागे जाकर कुछ बड़ी बन सकती हैं। बड़ी दुर्घटना ना हो इसलिए अभी से सोचिए समझिए फिर फैसला लीजिए।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज आपके सही फैसले आपको बहुत ताकत देंगे। आय बढ़ाने के नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं और आप समय रहते उन्हें पहचान भी पाएंगे। हालांकि धन से जुड़ा कोई मामला थोड़ी सी चिंता दे सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। पास में कोई गलती आपने दोहराई तो फिर उतनी ही भरपाई करनी पड़ेगी, इसलिए काफी सोच समझकर पुराने सबक से आगे सीख समझकर।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। घर में किसी धार्मिक या मांगलिक का आयोजन की तैयारी हो सकती है जिससे वातावरण काफी पॉजिटिव और खुशनुमा रहेगा। काम का दबाव कुछ ज्यादा रह सकता है और थकान महसूस होगी, इसलिए आप छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते रहें।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आपका उत्साह और पॉजिटिव एनर्जी पूरी और रहेगी। प्रेम जीवन में कोई नई शुरुआत या सुखद बदलाव आने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर कोई सावधानी रखें। योग हो, व्यायाम या नियमित दिनचर्या, उसको नजरअंदाज ना करें। कोई पुरानी प्रॉब्लम चलती आ रही है तो उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, प्रॉब्लम तो है लेकिन उसके सोल्यूशन भी हैं। परिवार के साथ बैठकर कुछ डिसाइड कर सकते हैं।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज का दिन आपकी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने का दिन है। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो उसे टालने के बजाय उस पर ध्यान दीजिए। परिवार में आपसी एकता बनाकर रखें और प्राथमिकता उसको दें। कार्य क्षेत्र में धैर्य और संयम से आगे बढ़ें क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला बाद में पछतावे का एक कारण हो सकता है।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज समाज में आपकी पहचान और सम्मान दोनों बढ़ सकते हैं। आपके विचारों और कार्यों को लेकर लोग काफी खुश होंगे। आर्थिक स्थिति में भी पहले की तुलना में सुधार दिखाई देगा। प्रेम संबंधों

0: में चली आ रही जो दूरी है वो कम होने से रिश्ते एक बार फिर से वापस आएंगे, क्लोजनेस आएगी, अपनापन वापस लौट कर आएगा।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ इमोशनल कनेक्ट हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे की खूबियां और कमियों को बेहतर तरीके से समझते हुए रिश्ते को नई मजबूती दे सकते हैं। वही कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी या जूनियर की मदद से लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। भाग्य का सहयोग मिलने से मुश्किल लगने वाला कोई भी काम आसानी से पूरा होता नजर आ रहा है।
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.

अच्छा आपको मैसेजेस यहाँ पे कह रहे हैं कि बस मॉर्निंग का टाइम और बस ये चाहते हैं कि सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत हो और नाइस नोट शुरू हो। जी हाँ, नोट्स की बात करें तो म्यूजिक के जो नोट्स हैं वो आप ही के लिए हैं। इट इज ऑल हैपनिंग राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती। अरे साहब, रेडियो मस्ती ऑन करके सुनते रहो। अब्दुल सारवानों की लग लगाना, डेफिनेटली गुड मॉर्निंग, चाय का कप और साथ में थोड़ी सी गपशप साथ दे रहे हैं यालेश। और वह कहते मीनाक्षी का बर्थडे है और मीनाक्षी सिवू उनके पापा की तरफ से मामा संतोष, रोशनी एंड कोंगमा से सारी फैमिली।

0: यस, बस एक पल लगता है जब आप डिसीजन लेते हैं, एक पल लगता है जब आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, रियलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, उसके बाद अगला स्टेप। लेकिन कभी अभी इन हीट ऑफ द मोमेंट कुछ ऐसे डिसीजन ले जाते हैं जो बाद में काफी भारी पड़ते हैं, इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से अपना काम करते रहें। थिंक ऑफ द लार्ज पिक्चर, जी हाँ, ये सोचना जरूरी है कि किसके हित में है। अरे साहब, अगर नहीं तो करना ही क्यों।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: 14th of October, Wednesday का दिन, time check exactly 10 AM. सुरिमागी आशनाओं से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार
1: सभी को. नमस्कार, सुनिए संक्षिप्त समाचार. कल रात देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई. कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर उतर आए. कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाना ज्यादा आसान रहा, लेकिन इस बार हिंसा केंद्र और पश्चिमी इलाकों के साथ साथ देश के पूर्व और दक्षिण में भी फैल गई. उत्तरी इलाके गुडलैंड्स में भी देर रात तक अधिकारी इन प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए डटे रहे. बॉम्बू, सेंट क्वा, गुडलैंड्स, मेबर्ग, बेजुतोंबो, एक ही नज़ारा. सड़कों को बाधित किया गया, पहिए जलाए गए, दुकानें लूट ली गई. तड़के सुबह आखिरकार देश में थोड़ी राहत आई और 6 बजे कर्फ्यू हटाया गया. मेट्रो सेवा ठप पड़ी हुई है, स्कूल बंद हैं, लेकिन एससी और एचएससी की परीक्षाएं जारी. बुधवार को लेकर जानने योग्य ये कुछ बातें हैं. शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे. विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी. हालांकि एक महत्वपूर्ण अपवाद है, एससी और एचएससी की परीक्षाएं निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जा रही हैं. परिवहन सेवाओं की बात करें तो बस सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन मेट्रो एक्सप्रेस की सभी सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं. भारी नुकसान के कारण आज कोई भी ट्रैम नहीं चलेगी और पूरे सप्ताह मेट्रो सेवा बंद रहने की संभावना बनी हुई है. एलर्जी तो माँ की स्थिति को लेकर कल स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने यह अच्छी खबर सुनाई कि उनकी हालत में सुधार है. 7 घंटों की जटिल सर्जरी के अंतर्गत उसके स्पाइन से गोली निकाली जा सकी और कुछ घंटे में उसे होश आया. स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार उसके हाथ पैर सब सही सलामत हैं और उसने आंखें खोली हैं. इस प्रेस सम्मेलन में मौजूद डॉक्टर उमेश शामलाल ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए भारतीय टीम की एक पूरा ऑपरेशन थिएटर साथ लाया था. CWA के कार्यालयों के बाहर लंबी कतारों के बाद अब वाटर टैंक एंड वाटर पंप स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. CWA के वेबसाइट पर ये

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोमवार शाम से शुरू हो चुका है। सभी उपनाम से पहले अक्षर की परवाह किए बिना यानी ए से जेड तक आपका सरनेम किसी भी अक्षर से शुरू होता हो आप किसी भी दिन आवेदन जमा करा सकते हैं। आईसीटी मंत्रालय ने लोगों से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने

निकालने के लिए की गई सर्जरी सफल रही। 71 साल के पोप की मंगलवार को रोम के अस्पताल में लगभग 90 मिनट तक सर्जरी चली। वैटिकन के अनुसार सर्जरी सफल रही और इस दौरान कोई जटिलता सामने नहीं आई है। सर्जरी के बाद पोप सामान्य रूप से होश में आ चुके हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Your news on NBC+.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: La fin l'année des costés, tu ne parais?
3: Pas juste l'année, et ta dépense aussi.
2: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client côté Rogers Capital pégaye 500 roupies rabais, l'os de premier mensualité.
3: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
2: Application facile! Zis avec ton code identité.
3: Astez à mon faire l'année sans tracas.
2: Attendez, fais ou application premier crédit côté Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Conditions applicables. Rogers Capital Credit. Au père sous licence de la FSI.
4: Oula Banzen! Twin en 18 et 30 ans, nous péatin toi les 31 octobre, l'embrasure, le monde pour nous premier SBM Trail. Imagine, un déco en plein attir, loin domaine 800 pans et

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैट।
1: सिद्धि विनायक शॉप विशेस यू अ शुभ नवरात्रि। मे दुर्गा माँ ब्लेस यू ऑल। हर पल को बनाइए खास और यादगार हेरिटेज घी के साथ। 1992 से भरोसे और प्यार के साथ बना हेरिटेज घी आपके लिए लाता है बेहतरीन मक्खन से तैयार किया गया शुद्ध और दानेदार घी। हमारे काओ घी की मनमोहक खुशबू आपकी खीर पूरी जलेबी और लड्डू को दे एकदम घर जैसा स्वाद और हर दिवाली को बना दे खास। प्योर ट्रेडिशन, प्योर अरोमा, प्योर लव। हेरिटेज काओ घी, अ गोल्डन टच ऑफ गुडनेस, नाउ अवेलेबल इन मॉरिशस।
2: Un total de 107 millions de roupies en jeu ce soir. Environ 37 millions de roupies au Loto Plus et approximativement 70 millions de roupies au Loto. 37 millions de roupies au Loto Plus et 70 millions de roupies au Loto. Vous pouvez rêver très très grand. Mais n'oubliez pas, chaque petit geste compte. Chaque goutte d'eau économisée, c'est tout le monde qui gagne.
3: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
4: RM2
5: Radio Musty.

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती

0: सूदिंग खुशबू विद ही धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस विद ही धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा या फिर विद ही संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ विद ही इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस फ्रेशनेस एंड कंफर्ट टू एवरी स्पेस।
1: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
2: Occasion Durga Puja, fresh flora malini fleuris plantées importante fleur puis offert un discount spécial l'eau sous ban guirlande bouquet et fleur dans tout ban magasin à travers l'île l'Almaty Flak Cœur de Ville Goodlands Cœur de Ville Royal Road Goodlands Rivière du Grand-Port Flak Retail Park Bel Air et Richter Mall. Pour plus renseignements contactez-nous le 57 96 92 24 57 96 92 24.
3: एगो यात्रा के मतलब है नवा अनुभव अपन संगी वक्त बिताई के और हर पल के मजा ले के और कबो कबो एगो बेहतरीन बिजनेस अवसर के फाइनलाइज करे के भी उहे खातिर कोनो भी अनजान परेशानी के इस सब खास पल के मजा खराब नहीं होई दी है। सिकुम के स्पेशली डिजाइन ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान पर भरोसा करे जिकर से अपन यात्रा बेफिक्र होके सकबा करे। यात्रा के पूरा मजा ली है सिकुम तोहर ध्यान रखी हमनी से संपर्क करे या हमनी से भेंट करे खातिर sikkum.mu पर जाई है। नियम आ शर्त लागू बाटे सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
4: सिकुम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
5: RM2 रेडियो मस्ती।

0: आज गाना सुना था परदेसी, मैंने गाना इतना बढ़िया है कि मूड तो फिट हो गया और सारी टेंशन की ऐसी की तैसी। चलिए कुछ बात हो जाए, देखते हैं कि आपकी साइड पर क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग,
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: वैसे कभी कभी होता है कि सुबह उठते ही आप फोन पकड़ लेते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि देखना जरूरी है एंड यू हैव टू टेक योर प्रिकॉशन जरूरी, लेकिन अपनी लाइफ को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत करो। अरे ऐसा होता ना, किसी का चैप्टर 20 देखकर अपने चैप्टर 5 को आप जज कर रहे हैं, यानी कि हर किसी की टाइमिंग अलग होती है, स्ट्रगल अलग होती है और सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग ही होती है। बस सिंपल सा काम कीजिए भाई, सोशल मीडिया पर दूसरों की कहानियां देख देख कर अपनी प्रोग्रेस याद कीजिए कि आपने अभी तक क्या सीखा, क्या किया, कहाँ थे और कहाँ आ गए, किस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, कल के कंपैरिजन में आज आप किस तरह बैठे हैं। बस आपका रियल कंपटीशन आप ही हैं, ये सोच लीजिए। आज का मतलब सिंपल है, कंपीट विद योर यस्टरडे, किसी और के आज के साथ नहीं। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ म्यूजिक का मूड बनाते हैं, अगला गाना चलाते हैं।
1: You're listening to RM2, a radio mastery.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैट।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
3: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: वैसे हवा काफी चल रही है और थोड़ा सा रेनी भी हो रहा था बीच में, प्लेजेंटली कूल भी. तो फैशन मंत्र आज का है कि कंफर्टेबल रहिए, शिक रहिए और साथ में रेन रेडी. लेडीज एंड जेंटलमैन, जरूरी है कि ब्रीथेबल कॉटन शर्ट्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं. रिलैक्स फिट ट्राउजर्स हो या स्टाइलिश जीन्स एक लाइट वेट टॉप के साथ, बिल्कुल बढ़िया. और साथ में बेज, पास्टल कलर्स, ऑलिव ग्रीन या फिर क्लासिक व्हाइट. हाँ, व्हाइट वर्क्स प्रीटी नाइस, एफर्टलेस फ्रेश लुक. फुटवेयर में अवॉइड एनी स्लिपरी हील्स. भाई कॉम्फी स्नीकर्स या फ्लैट्स अच्छा लगेगा. एंड साथ में डोंट फॉरगेट टू कैरी अ कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला, वो छोटी सी होती है ना जो घुस जाती है बैग में. हाँ वैसे, क्योंकि बारिश कब सरप्राइज दे दे या फिर एंट्री मार दे कब पता नहीं. कीप इट लाइट, कीप इट प्रैक्टिकल, लेकिन स्टाइल के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स. RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: चलिए गाने के जाएगा सीधा 11 बजे के समाचारों की ओर।

0: 11 बजे वाले 14th of October राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ संक्षिप्त समाचार के साथ स्टूडियो में आ गया आशना उनसे मिलते हैं। नमस्कार आशना।
1: सभी को नमस्कार। आइए सुनिए संक्षिप्त समाचार। देश के 15 इलाकों में आज सुबह 6 बजे कर्फ्यू हटा दिया गया जो कल रात 8:30 बजे से लागू हुआ। देश के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों के बाद ये फैसला लिया गया। आज दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट की आपात बैठक लगाई जाएगी ताकि स्थिति का जायजा लेकर निर्धारित किया जाए कि आगे कौन से कदम उठाने होंगे। कल देश को संबोधित अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि जानकारियों के मुताबिक घृणा की भावना के साथ एक विशेष गुट ही इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं जो देश में शांति भंग करने के उद्देश्य से दहशत फैलाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकारी नेता ने सभी से देश में शांति और एकता बनाए रखने की मांग की। और अपने संबोधन में कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शुक्रवार रात को कॉलोव्यू में हुई घटना का कड़ा खंडन किया जहां एलोजीटो मां को गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि जो इस पुलिस अफसर ने किया वो अस्वीकार्य है लेकिन एक की सजा सबको क्यों दी जाए। उन्होंने याद दिलाया कि पुलिस फोर्स का उद्देश्य देश और जनता की सुरक्षा करना है। उन्होंने आगे कहा कि इन हिंसक प्रदर्शनों और आगजनी के जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सरकारी नेता ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से बचने की मांग की जो डर और दहशत के साथ साथ देश में तनाव को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने प्रेस वालों से जानकारियों की विश्वसनीयता की जांच करने के बाद ही प्रसारण करने की अपील की और कहा कि जानकारी देने वालों की जिम्मेदारी समाज की रक्षा करना भी है। और जैसे कि आप जानते हैं आज दूसरे दिन के लिए देश के सभी निजी और सार्वजनिक पूर्व प्राथमिक माध्यमिक स्कूल सेंट स्कूल उच्च शिक्षा संस्थाएं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट MITD मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और डे केयर सेंटर बंद रखे गए। फिर भी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर स्कूल सर्टिफिकेट तक के छात्रों की परीक्षाएं जारी रखी गई। मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा में इसके अलावा पियर्सन एडेक्सेल की परीक्षाएं भी आज जारी रखी गई। कल कर्फ्यू के बावजूद भी कई लोग सड़कों पर उतर आए। देश के केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों को छोड़कर दूसरी जगहों पर भी हिंसक वारदातें पेश आई। बॉम्बू सेंट क्वा गुडलैंड मेबर्ग बेजुतोम्बो आदि इलाकों में कई लोग सड़कों पर उतरे। सड़कों को बाधित किया गया। पहिए जलाए गए और दुकानें लूट ली गईं। आज तड़के सुबह आखिरकार देश में थोड़ी राहत आई और सूरज की पहली किरणों के साथ आज 6 बजे कर्फ्यू भी हट

भत्ता दिया गया। विदेशी समाचारों में वेटिकन की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पोपलियो 14 को लंग कैंसर हो गया है। हालांकि उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए की गई सर्जरी सफल रही। खतर वर्षीय पोप की मंगलवार को रोम के अस्पताल में 90 मिनट तक सर्जरी की गई। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
3: Some things are made and some things are crafted. At Fab India, every thread tells a story. Discover saris, handblock kurtas, brought to life with timeless techniques, uniquely handcrafted, and beautiful creations shaped by the skill and soul of Indian artisans. Because when you wear Fab India, you don't just wear fashion, you wear craftsmanship. Fab India, celebrating the beauty of Indian craftsmanship. Fab India, Centerpoint Mall, Trianon.
4: RM2
5: Radio Musti

0: 2 रेडियो मस्ती
1: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: जय कहना और सुनना बहुत जरूरी है, और अभी स्थिति जैसी है उसी हिसाब से जितनी पूजा प्रार्थना हो रही है, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की गई, लेकिन अगर सेफ्टी को ध्यान रखें तो जरूरी है कि अपनी पूजा प्रार्थना घर पर तो जरूर करते ही रहें। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, 11:30, और बस यही चाहते हैं कि ऊपर वाले का लेकर नाम हर मुश्किल को कर दें काम से उसका तमाम।
1: तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरम्भ करें दुर्गा माँ की।
3: हर पल को बनाइए खास और यादगार हेरिटेज घी के साथ। 1992 से भरोसे और प्यार के साथ बना हेरिटेज घी आपके लिए लाता है बेहतरीन मक्खन से तैयार किया गया शुद्ध और दानेदार घी। हमारे काऊ घी की मनमोहक खुशबू आपकी खीर, पूरी, जलेबी और लड्डू को दे एकदम घर जैसा स्वाद और हर दिवाली को बना दे खास। प्योर ट्रेडिशन, प्योर अरोमा, प्योर लव। Heritage Cow Ghee, a golden touch of goodness. Now available in Mauritius. RM2 Radio

0: और M2
1: रेडियो मस्ती
2: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से
0: और M2
1: रेडियो मस्ती

रोशनी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए दैट यू लविंग द सॉन्ग्स. और अभी ऐसी कुछ और गाने आने वाले हैं रेट्रो रिदम मैं पर शुभी की माता प्लद उनके लिए गाना और ये है उनकी वाइफ करुणा की तरफ से हंसनी हंसिका एन चंद्रावती जी साथ में आशा जी आपको भी अब बिग हेलो कहते सभी डिबोटीज को पायस नवरात्रि और मामा कुमारी है शुभम ऋषभ दीदी आरती जीजू एंड जानू फैमिली. थोड़ी देर में रेट्रो रिदम जल्दी मिलने वाले आप और हम तब तक थोड़ा बेकरार देख

पेश आई जहां पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें 15 नाबालिग हैं। 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज उन्हें विभिन्न जिला अदालतों में पेश किया जाएगा। आज 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक लगेगी। स्थिति का जायजा लिया जाएगा और उठाए जाने वाले कदमों के बारे में फैसला लिया जाएगा। देश के अलग इलाकों में हिंसक घटनाओं के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नावामागी ने अभिभावकों खासकर माताओं से अपील की है। उनका कहना है कि कुछ लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चालाकी से उनसे काम निकाल रहे हैं। उप प्रधानमंत्री ने अभिभावकों से बच्चों को सही रास्ते पर लाने की मांग की। कल रात देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं पेश आई। कर्फ्यू के बावजूद भी लोग सड़कों पर उतर आए। कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाना ज्यादा आसान रहा, लेकिन इस बार हिंसा केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों के साथ साथ देश के पूर्व और दक्षिण में भी फैल गई। उत्तरी इलाके गुडलैंड्स में भी देर रात तक अधिकारी इन प्रदर्शनों को काबू में करने की कोशिश में लगे रहे। बॉम्बू, सेंट क्वा, गुडलैंड्स, मेबर्ग, बेजीटोम्बो में एक ही नजारा था। सड़कों को बाधित किया गया, पहिए जलाए गए, दुकानें लूट ली गईं। बॉम्बू में विनर्स सुपरमार्केट में लूटपाट की खबर है। कास्काबेल मॉल की कई दुकानें लूटी गईं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें 2 नाबालिग हैं। मेबर्ग में एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया। सेंट क्वा और बेजीटोम्बो में संयम बनाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा। काथोबोन में 2 लोगों को मोलोटोव कॉकटेल के साथ पकड़ा गया। याद रहे कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को 5 साल कैद की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी स्कूल बंद हैं। विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। हालांकि एक महत्वपूर्ण अपवाद है, एससी और एचएससी की परीक्षाएं निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। परिवहन सेवाओं की बात करें तो बस सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन मेट्रो एक्सप्रेस सेवा पूरी तरह ठप है। भारी नुकसान के कारण आज कोई भी ट्राम नहीं चल रही है और पूरे सप्ताह मेट्रो सेवा बंद रहने की संभावना है। 114 मिलियन रुपए की जब्ती की जांच के सिलसिले में कविता जगनाथ आज अपने वकील राउफ गुलबुल के साथ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के मुख्यालय पहुंची। इस मामले में तीसरी बार के लिए पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ की पत्नी के साथ पूछताछ की जा रही है। इस मामले में रियल एस्टेट और पर्यटन क्षेत्र के बिजनेसमैन जोजियों दिलावन और उनके अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया था। जोजियों दिलावन ने पुष्टि की थी कि ये रकम पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ की है, जिन्हें इसी मामले में हिरासत में लेकर बाद में जमानत पर रिहा किया गया था। और विदेशी खबरों में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा के मद्देनजर फ्लाइट का रूट बदलकर उसे तुरंत जयपुर हवाई अड्डे की ओर डाइवर्ट किया गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फिलहाल विमान गहन जांच के सिलसिले में है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। लिस्कालिये ब्रांच रोड रिपाई में 75 साल के 75-year-old के श्री आनंद मोहन, जो कांग्रेस से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई।

0: News on NBC Play and NBC.mu.
1: Retro Rhythm.
2: RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: बारह बजकर 13 मिनट हो चुके हैं। नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आरएम2 रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं रेट्रो रिदम और मैं हूं आपके साथ पूनम। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की पूजा का पावन अवसर, तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं दोपहर के पुराने गानों की मिठास के साथ और भी कुछ खास बनाते हैं। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है आप कर सकते हैं 5499-1294 पर। मैं हूं आपके साथ। ये गाने बहुत ही प्यारे हैं, दिल को छू लेने वाले।
2: हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
3: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:25 हो चुके हैं दोस्तों, और दोपहर का वक्त, और एक तरफ खाना और दूसरी तरफ थोड़ा सा आराम, तो ऊपर से पुराने गाने, तो बस कहते हैं ना कि दिन बन जाता है और दोपहर सुनहरी हो जाती है। चलिए जी, आपके 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। वीना जी साथ दे रही हैं और अपने पति देव के लिए ढेरों विशेज लेकर आई हैं, और इतना ही कह रही हैं कि आपसे प्यार बहुत है, क्या करूं, आपके बिना रह नहीं पाती। ब्यूटीफुल, थैंक यू। आप दोनों की जोड़ी ऐसे हमेशा सलामत रहे, खुश रहें, हमेशा प्यार बरसता रहे आपकी ज़िंदगी में। यलेश जी साथ दे रहे हैं और अपनी प्लेट के साथ हमेशा की तरह आ चुके हैं, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थैंक यू सो मच इस प्लेट को दिखाने के लिए। और जो भी इस समय लंच कर रहे हैं, बस अपने खाने का कहते हैं टेस्ट लीजिए और इंजॉय कीजिए। और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त राजन रघुवत जी, जो कि लंदन से साथ दे रहे हैं और आ गए, और कहते हैं कि रेट्रो रिदम चले और मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है, और ये भी सच बात है, और आप मैसेज ना करें ऐसा भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। फिया जी साथ दे रही हैं और बहुत ही प्यारे गानों की फरमाइश के साथ साथ जुड़ चुकी हैं। वीना जगेश्वर जी साथ दे रही हैं और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश के साथ आई हैं। सुदेवी जी, अगला गाना आपके नाम जाएगा। और साथ में हमारी रेखा जी हैं, कह रही हैं रेट्रो रिदम चलता है और मुझे इतना पसंद है रेट्रो रिदम, क्योंकि यहाँ पर चलते हैं पुराने गाने और मैं आ जाती हूँ भाग भाग के। तो आप सब जो भी इस समय साथ दे रहे हैं, आप सबका स्वागत है और थैंक यू, आप सभी साथ जुड़ चुके हैं। और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499-1294 पर।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
3: Some things are made and some things are crafted. At Fab India, every thread tells a story. Discover saris, handblock kurtas, brought to life with timeless techniques, uniquely handcrafted, and beautiful creations shaped by the skill and soul of Indian artisans. Because when you wear Fab India, you don't just wear fashion, you wear craftsmanship. Fab India, celebrating the beauty of Indian craftsmanship. Fab India, Centerpoint Mall, Trianon.
0: RM2
4: Radio Musti. मैंने

0: रेट्रो रिदम 12:47 हो चुके हैं सर। कहते हैं ना जिंदगी में मुस्कुराना जरूरी है और रेट्रो गाने इसी काम के लिए बने हैं। जब ये बजते हैं ना तो सारी टेंशन गायब हो जाती है और ऐसे ही जो अगला गाना है ये आप सभी के लिए है और स्पेशली जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे ड्राइव करते हुए, चाहे व्हाट्सअप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आ रहे हैं, तो हम सब आपको यही कहेंगे मैसेज करते रहिए, अपने पसंद के गाने बताते रहिए, कौन कौन से सुनना चाहते हैं, जो लगेगा इस समय के हिसाब से हम चला पाएंगे ज़रूर चलाएंगे। इंजॉय कीजिए इस प्यारे से अगले गाने को।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती

0: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहली स्थानीय खबरें। कल रात एक बार फिर पुलिस को कई इलाकों में हालात संभालने के लिए तैनात होना पड़ा। कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू होने के बावजूद देश के कई हिस्सों में हुई घटनाओं के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इन घटनाओं के सिलसिले में कुल 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 15 नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 43 को हिरासत में रखा गया है। इन सभी को अपने खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के तहत आज बुधवार को विभिन्न जिला अदालतों में पेश किया जाएगा। वहीं स्थिति की समीक्षा करने और आगे की कार्रवाई तय करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक आज दोपहर बाद होगी। हमारे बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना बंद करें, यह सख्त चेतावनी आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नावामारी ने दी। देश में हाल के दिनों में हुई घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने पहल की है और माता पिता से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने खास तौर पर परिवार की माताओं को संबोधित किया। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अव्यवस्था फैलाने के लिए नाबालिगों को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्यन नावामारी ने लोगों से समझदारी दिखाने और नागरिक जिम्मेदारी निभाने की तत्काल अपील की है। कोबिता जगन्नाथ आज सुबह फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन यानी FCC पहुंची। ये कई सूटकेसों में लगभग 11 करोड़ 40 लाख रुपए की बरामदी से जुड़े मामले में जांच का अगला चरण है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ की पत्नी के साथ उनके वकील राउफ गुलबुल भी मौजूद थे। इस मामले में उनसे तीसरी बार पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि इस जांच के सिलसिले में रियल एस्टेट और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबारी जोजियों दिलावर तथा उनके अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया था और दिलावन से ने दावा किया था कि ये पैसे प्रवीण जगन्नाथ के थे। इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करती हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं निर्मा
2: जी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हुए हैं। हमले में एक आवासीय इमारत और विद्युत केंद्र को नुकसान पहुंचा है, जिससे कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर लड़ाई बंदी भंग करने का आरोप लगाया है। विदेश की एक और खबरें आपके साथ आशिता
1: जी। निर्मा, और अन्य खबरों में ये भी खबर है कि वैटिकन ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया है कि पोप लियो 14वें को फेफड़ों का कैंसर होने का पता चला है। हालांकि उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए की गई सर्जरी सफल रही। 71 वर्षीय पोप की मंगलवार को रोम के जेमेली अस्पताल में लगभग 90 मिनट तक सर्जरी हुई। इसके बाद उन्हें फेफड़ों के एंडोनोकोसिनोमा से पीड़ित पाया गया। वैटिकन के अनुसार ऑपरेशन सफल रहा और इस दौरान कोई जटिलता नहीं हुई। सर्जरी के बाद पोप सामान्य रूप से होश में आए और कुछ समय तक निगरानी में रहने के बाद उन्हें उनके कमरे में वापस ले जाया गया। वैटिकन ने बुधवार सुबह यानी कि आज पोप ने बताया कि पोप ने अस्पताल में रात शांतिपूर्ण रूप से बिताई। उम्मीद है कि उन्हें लगभग 1 सप्ताह तक अस्पताल में रहना होगा। फेफड़े में गांठ का पता नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान चला था, जिसे वैटिकन ने सामान्य जांच बताया है। इससे पहले पोप की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर घंटों इंतजार करते रहे। जब उनकी कार वहां से गुजरी तो लोगों ने उनका अभिवादन किया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनते हैं। 83 साल की 83 years old की श्रीमती पवित्र देवी बोहरन, श्रीमती पवित्र देवी बोहरन पैदाशम बेचू की

सिंगयाल और जिन्हें सविता के नाम से बुलजादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शुक्रवार को दिन के 1 बजे लाशापेल और दौतिलियन सन वो बस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगौद की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट 1 PM। लिस्कालिये ब्रांच रोड रिपाई में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंद मोहन श्री आनंद

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:12 हो चुके हैं, सेकेंड आवर स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे मैसेजेस आपके आ रहे हैं। हम ये दो गानों के बाद आपके मैसेजेस भी लेंगे, पर जानते हैं हम सब कि रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में 26,000 यानी 26,000 गाने गाए हैं, जिसमें उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, और उन्हीं की आवाज़ में ये जो अगला गाना होगा वो बहुत ही खूबसूरत है। इन्जॉय कीजिए इस गानों को और साथ रहिए हमारे।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2

नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
0: सिद्धि विनायक शॉप विशेस यू अ शुभ नवरात्रि मई दुर्गा माँ ब्लेस यू ऑल RM2
1: रेडियो मस्ती

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:23 हो चुके हैं और हमारे साथ बहुत सारे हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे मैसेजेस पढ़ लो जी। हाँ जी, क्यों नहीं पढ़ेंगे जी। इस समय हमारे साथ है धनेश्वर जी, साथ दे रहे हैं अपनी पत्नी सुनीता जी के साथ और हंसवी बियाना एंड भाविका के साथ, अपने प्यारे प्यारे से बच्चों के साथ। जीना जी, जयश्री साथ दे रही हैं हमारी इटली से और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लुवेशा एंड अपादू फैमिली साथ दे रही है, इंजॉय करिए। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जय पॉल साथ दे रही हैं और बहुत खूबसूरती से बस इतना ही कहा है कि जिनका भी दोपहर का टाइम चल रहा है और जो भी खाना खा रहे हैं, अच्छे से खाना खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना ख्याल रखा हम सब के लिए। इस समय बाबू आनंदवा जी साथ दे रहे हैं और बहुत ही प्यारे से फ़ोन कॉल के साथ हमेशा की तरह बस प्यारा सा गाना बताया और कहा प्लीज़ चलाइएगा, बिल्कुल चलाने वाले हैं। प्रकाशवती जी साथ दे रही है बेल्जियम से और इंजॉय कर रही हैं, और उधर बहुत गर्मी है बेल्जियम में क्या, और हम तो यही कह रहे हैं यहाँ पे भी थोड़ी सी गर्मी है पर बहुत अच्छा मौसम भी है। साथ में रोशनी जी साथ दे रही हैं और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश के साथ आई हैं। भाई बढ़ते हैं आगे। स्वीटी गोपाल जी का आज जन्मदिन है और पूरा परिवार और पूरे फैमिली उनको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, हमेशा ऐसे रहो, खुश रहो, हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा गुलाबों के फूलों के जैसे कहते हैं ना, खुशबू से भरती रहे। और हम तो यही कहते हैं कि हमारी यही प्रार्थना है कि नवरात्रि के समय हमेशा ज़िंदगी में प्यार और ज़िंदगी में खुशियाँ बरसती रहें तुम्हारी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। और उन सभी का जिनका भी आज बर्थडे है, हम सब हमारी पूरी एम्बेसी की टीम की तरफ से, RM2 रेडियो मस्ती की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप सभी जो इस में हमारा साथ दे रहे हैं, एंजॉय कीजिए गानों को।
0: रेट्रो रिदम,
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:34 हो चुके हैं दोस्तों, और आप दे रहे हैं साथ हमारा यानी कि रेट्रो रिदम में, और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। हम सभी के मैसेजेस लेंगे, पर कहते हैं ना कि हर सिंगर की आवाज़ में कोई ना कोई जादू होता है। किसी की आवाज़ में दर्द होता है, किसी की आवाज़ में मिठास होती है, किसी की आवाज़ में जोश होता है। तो अगला गाना ऐसी है, जोश से भरा हुआ। इंजॉय करिए इस गाने को, और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है या प्यारे से एक कहते हैं दिल का कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो आप मैसेज कीजिए 5499124 पर।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम। 1:45 हो चुके हैं दोस्तों और आप साथ दे रहे हैं रेट्रो रिदम में। मैं हूं आपके साथ पूनम। आप जानते हैं या कभी आपने सोचा है कि एक ही गाना कितनी जगह घूमता था, कभी स्टूडियो से रेडियो तक, रेडियो से कैसेट्स तक, और कैसेट से अब आज की डेट में मोबाइल पर। और ये गाना जो हमारे प्यार से भरा होता है वो अगर हमारे दिल में बस जाए तो फिर बात ही क्या, तो फिर तो वो कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे ही हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। किशन सुहाती जी साथ दे रहे हैं और आज उनका बर्थडे है, उनकी वाइफ रति जी, उनका बेटा लविश और बेटी जस्वी उन्हें विश कर रहे हैं और कह रहे हैं विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे डार्लिंग हस्बैंड, पर बस ये बताओ पार्टी कहाँ है और क्या करने वाले हो। तो हम तो आपको बोलेंगे घर में रहो, हैव सेफ, जो भी घर में बना है पका है उस खिलाओ पिलाओ, इंजॉय कीजिए। देव जी साथ दे रहे हैं पेरिस से और अपनी वाइफ को बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि प्यार इतना करती हो कि मैं क्या बताऊँ, मैं जिंदगी में इतना प्यार कभी नहीं सोचा था जितना तुमने मुझे जिंदगी में दिया है। थैंक यू सो मच इतना प्यार एक दूसरे को देने के लिए, ऐसे ही मोहब्बत आपकी बढ़ती रहे। अब्दुल सायरा मानो जी भी यही कह रहे हैं कि प्यार में अगर आप जैसा एक पार्टनर मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो बस बस खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, गानों के साथ में जुड़े रहिए।
1: रेट्रो रिदम RM2

दोस्तों ये था आज का रेट्रो रिदम। मैं थी आपके साथ पूनम आरएम टू रेडियो मस्ती में। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बाय बाय, आप सपना ख्याल रखिएगा।

0: टाइम चेक दोपहर के 2 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आशिता से, आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। हमारे बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना बंद करें, ये सख्त चेतावनी आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्यन अवामारी ने दी। देश में हाल के दिनों में हुई घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने पहल की है और माता पिता से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने खासतौर पर परिवार की माताओं को संबोधित किया। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अव्यवस्था फैलाने के लिए नाबालिगों को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्यन अवामारी ने लोगों से जिम्मेदारी दिखाने और नागरिक जिम्मेदारी निभाने की तत्काल अपील की है। आज बुधवार को कविता जगन्नाथ ने फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में तीसरी बार पूछताछ की गई। उनसे पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी ने फरवरी 2025 में तलाशी के दौरान 114 मिलियन रुपए से भरे सूटकेसों की बरामदगी के मामले में एक बार फिर सवाल जवाब किए गए। FCC के अधिकारियों ने कोबिता जगन्नाथ से 3 घंटे से कुछ अधिक समय तक पूछताछ की। ये मामला फरवरी 2025 में तलाशी के दौरान 4 सूटकेसों में 11 करोड़ 40 लाख रुपए की बरामदी से जुड़ा है। ये तलाशी कंपनी माय हॉलीडेज लिमिटेड के 2 अधिकारियों से संबंधित जांच के तहत की गई थी। इस मामले में ये तीसरी पूछताछ थी। इस दौरान कोबिता जगन्नाथ के साथ उनके वकील भी मौजूद थे। वे दोपहर के समय FCC कार्यालय से बाहर निकले। उन्हें आगे की पूछताछ के लिए बाद में किसी अन्य तारीख पर फिर से बुलाया जाएगा। आध्यात्मिक शुद्धि और आत्म अनुशासन का समय। पूरे मॉरिशस में तेलुगु समुदाय के श्रद्धालु भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर की आराधना कर रहे हैं। 40 दिनों तक चलने वाली इस व्रत और भक्ति अनुष्ठान के दौरान द्वीप के विभिन्न मंदिरों में प्रतिदिन प्रार्थनाएं की जाती हैं। भक्ति गीतों और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है और तबले की थाप के साथ भक्ति गीत गूंज रहे हैं। भक्तों के स्वर उठते दिखाई दे रहे हैं और प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। काठरबोन स्थित मंदिर में श्रद्धालु पूरे आस्था और भक्ति के साथ एकत्र हुए। पूरा वातावरण आध्यात्मिक शांति और श्रद्धा से सराबोर रहा। और अब बढ़ते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ की ओर, जहां पर निर्मा हमें ज्यादा जानकारी दे रही है।
2: जी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 31 लोग घायल हुए हैं। हमले में एक आवासीय इमारत और विद्युत केंद्र को नुकसान पहुंचा है, जिससे कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लड़ाई बढ़ी बंधी भंग करने का आरोप लगाया है। विदेश के एक और खबरों के साथ आशिता।
1: अन्य खबरों में हम आपको बता देते हैं कि आधुनिक यूरोपीय इतिहास में तोड़फोड़ की सबसे सनसनीखेज घटनाओं में से एक के 4 साल बाद यूक्रेन के एक व्यक्ति पर बुधवार को जर्मनी के हैमबर्ग में मुकदमा शुरू हो रहा है। उस पर रूस की नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों को विस्फोट से उड़ाने का आरोप है, जिनके जरिए जर्मनी को गैस की आपूर्ति की जाती थी। जर्मनी अभियोजकों के अनुसार सरई के नाम से पहचाने जाने वाले इस व्यक्ति पर यूक्रेनी सैन्यकर्मियों के साथ मिलकर पाइपलाइनों को नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप है। इसका कथित उद्देश्य गैस से होने वाली रूस की कमाई रोकना था, जिसे वह अपने युद्ध का खर्च उठाता है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
3: On MBC Play and MBC.mu.
4: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay ou Que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
3: More music in the mix.
5: Aaj Azadi hai.
6: Bombay Talkies.
7: Radio Musti.
8: Radio Musti.

0: More music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies. Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: सो वेल फ्रेंड्स, वार्म वेलकम 2:10 वेनसडे आफ्टरनून, जहां पर आप कनेक्टेड हैं रेडियो मस्ती के साथ. जानते हैं आपके आफ्टरनून टाइम में लेकर आते हैं बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स विद सम लेटेस्ट ट्रैक्स. अभी के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल इंडी पॉप विशाल मिश्रा एंड श्रेया घोषाल की आवाज़ें. मैं हूं परी आपके साथ अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक आपको एंटरटेन करेंगे विद बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामना।

0: 2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
3: सिद्धि विनायक शॉप विशेस यू अ शुभ नवरात्रि। मे दुर्गा माँ ब्लेस यू ऑल।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

And well friends, good wishes के साथ यहाँ पर शामिल हो रहे हैं best mix of music as well. Steven Ben की आवाज and magic of the past, लेकिन with the blast, इसी गाने को हम dedicate कर रहे हैं आप सभी के नाम for all the listeners जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. Have a wonderful time and keep enjoying wonderful songs on the waves of Radio Masti. Bombay Talkies अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक.

टू रेडियो मस्ती शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से RM2 रेडियो मस्ती।

And well friends, it's 2:36. मैं हूँ परी आपके साथ. It's time for your Bombay Talkies. अब जानते हैं Bombay Talkies में हम B-Town की खबरें आप तक पहुँचाते हैं. So box office पर Drishyam 3 जबरदस्त कामयाबी हासिल कर रही है. इसी बीच director अभिषेक पाठक का मानना है कि ये franchisee अपने सही अंजाम तक पहुँच चुकी है. फिल्म मेकर ने चौथे पार्ट की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि कहानी का अंत बहुत अच्छे ढंग से हुआ है. और एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2 अक्टूबर को दृश्यम डे के तौर पर मनाया जाता रहेगा. उन्होंने आगे कहा कि हम सभी का यही मानना है कि फिल्म का ये आखिरी पार्ट है. जाहिर है कि दर्शकों को ये पसंद आ रहा है और वो इसकी चर्चा भी कर रहे हैं. लेकिन दृश्यम ऐसी फ्रेंचाइजी नहीं जिसके लिए हम एक और फिल्म बस बनाने की खातिर बना ले. ये पूरी तरह से कहानी पर निर्भर करता है और कहानी का अंत यानी कि कहानी जो है अब खत्म हो चुकी है और मुझे हमेशा से इसका अंत काफी क्रिएटिव लगा. ये फ्रेंचाइजी के लिए एक लव लेटर की तरह है. और साथ ही अभिषेक ने आगे कहा कि इसका अंत काफी खूबसूरती से किया गया है. लोगों को यही बात पसंद आ गई और बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि क्या इसका चौथा पार्ट आ सकता है. अगर हम चाहे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन असल बात यही है कि जिस मोड़ पर इस फिल्म को रोकना था उसी फिल्म पर अब ये आकर रुकी है और ये फ्रेंचाइजी का एक बेहतरीन अंत था. दृश्यम 3 अभी तक अपने दूसरे हफ्ते में है और लोग बड़ी संख्या में अभी भी थिएटर में जा रही हैं. दूसरे वीकेंड में इसकी कमाई 60 करोड़ रुपए रही, यानी कि 60 करोड़ का आंकड़ा इस फिल्म ने कमाया है ऑन द सेकेंड वीकेंड. सो अभी के लिए तो काफी चर्चाएं चल रही हैं दृश्यम 3 की. दृश्यम 3 द कंक्लूजन, जहां पर लोगों को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और मेकर्स का तो कहना है कि दैट्स द लास्ट पार्ट, यानी कि ये जो फ्रेंचाइजी है उसका अंत अब यही हो रहा है एंड देयर वोंट बी मेकिंग एनी मोर पार्ट्स ऑफ दृश्यम. सो अभी के लिए जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा देखिए, और अगर आपने फर्स्ट टू पार्ट्स नहीं देखे हैं उन्हें देखने के बाद ही ये थर्ड पार्ट देखिए ताकि आपको ये पूरी फिल्म समझ में आ जाए. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिल्म. अभी के लिए तो ये कमा रही है पैसे और लोगों को आ रही है ये फिल्म पसंद. सो चलिए, यहाँ पर अजय देवगन के फैंस ऑल हैप्पी और उम्मीद करते हैं कि अजय देवगन की दूसरी फिल्म दृश्यम तो अब नहीं आने वाली, लेकिन ऑफकोर्स उनकी जो नेक्स्ट फिल्म है उसमें जो उनका रोल होगा वो उनके फैंस को पसंद आएगा और थोड़ा सा इंतजार रहेगा. लेकिन ऑफकोर्स गानों का कारवा आपके लिए राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती. सो दृश्यम की बात हुई है और दृश्यम 2 का ये गाना हम तो भी यही कहना चाहते हैं, यानी कि हमारे जो लिसनर्स हैं आपका और हमारा साथ भी तो बना रहता है और साथ हमेशा बना रहे यही हम चाहते हैं. अभी के लिए तो हम बस गुड विशेस आप तक पहुंचा रहे हैं. मन को शांत रखिए, दिमाग को काम रखिए एंड स्टे कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मूसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर वन एंड ओनली ड्राउन ब्रदर्स

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से।
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: FM2 रेडियो मस्ती
1: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से
0: RM2 रेडियो मस्ती।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल इट्स 252 हमारा साथ दे रहे हैं आप. लेटेस्ट ट्रैक्स आपके लिए हम चला रहे हैं और साथ ही आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस ऑन 5499 1294 पर. दाविसन लाल माटी से आए हैं अपनी गुड विशेस के साथ. तो अगला गाना होगा आपके नाम. विजया जी आप भी साथ दे रही हैं और कहती हैं अभी के लिए मन थोड़ा नॉट सो हैप्पी लेकिन आई डू अंडरस्टैंड सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है. लेकिन जैसे हमने आपसे कहा दैट नवरात्रि चल रहे हैं और सब कुछ अच्छा ही होगा. Hope for the best और अभी के लिए तो आप हमारा साथ दे रहे हैं. So thank you so much for always staying connected RM to Radio Masti के साथ. यहाँ पर कविता जी आप भी आई हैं अपनी प्यारी सी कविता के साथ. कहती हैं RM to Radio Masti गाने हमेशा enjoy करते हैं और हमेशा साथ निभाते हैं. Thank you so much. अभी के लिए तो आपका काम खत्म. आ गई हैं आप घर एंड घर पर चिल करते हुए या enjoying the songs. So अगला गाना आपके नाम और थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. कहीं मत जाइए. RM to Radio Masti आपके लिए कुछ और ब्यूटिफुल ट्रैक्स एंड कुछ और लेटेस्ट अपडेट हम लेकर आएंगे आफ्टर समाचार. तब तक के लिए मैं हूं परी आपके साथ और कनेक्टेड हैं आप रेडियो मस्ती के साथ. आपका और हमारा साथ टिल 4 PM.

0: थोड़ी देर में सुन पाएंगे समाचार. स्टे वेल कनेक्टेड.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: दोपहर के 3 बज रहे हैं। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। पिछले कुछ दिनों की बाधाओं के बाद आज बुधवार को आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक सामान्य हो गई, ये जानकारी एमसीसीआई की महासचिव दृष्टि सिंह रामदेनी ने दी। हालांकि उनके अनुसार फिलहाल नुकसान का आकलन करना जल्दबाजी होगी। लेन देन में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि गतिविधियां लगातार जारी रहने से इस देरी की भरपाई हो सकेगी। उन्होंने मांग की कि कर्फ्यू के दौरान काम करने की अनुमति खाद्य ऑपरेटरों और कृषि खाद्य क्षेत्र के कारोबारियों को भी दी जाए, क्योंकि ये क्षेत्र 24 घंटे काम करता है। नवरात्रि के अवसर पर मॉरिशस के कई मंदिरों और संस्थाओं में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों के माध्यम से मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना की जा रही है। कैटरबोन में दो अलग अलग स्थानों पर रात के विशेष समय में धार्मिक

0: कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैतूल की त्रिमूर्ति सोसाइटी इस वर्ष भी मां दुर्गा भवानी के सम्मान में 9 दिवसीय श्री श्री दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। ये आयोजन बंगाली परंपरा पर आधारित है, जिसमें मां दुर्गा का स्वागत परिवार में लौटने वाली बेटी के रूप में किया जाता है। वहीं बासन रोड स्थित काली मां मंदिर में भी नवरात्रि का विशेष आयोजन किया गया। पिछले 20 वर्षों से मंदिर में श्रद्धालु पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। रात में आयोजित विशेष कथा में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। और मंगलवार हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। फ्रांस भर में 10,000 लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हाई स्कूल के छात्रों के समर्थन में रैलियां निकाली। ट्रेड यूनियनों के अनुसार इन प्रदर्शनों में लगभग 4,80,000 लोग शामिल हुए। स्कूलों की स्थिति और पुलिस की कथित हिंसा को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच ये आंदोलन तेज हो रहा है, जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। वहीं शनिवार को महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत के विरोध में भी प्रदर्शनों की योजना है। एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर निर्मा के साथ।
1: यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हुए हैं। हमले में एक आवासीय इमारत और विद्युत केंद्र को नुकसान पहुंचा है, जिससे कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर लड़ाई बंदी भंग करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।

0: एक शोक समाचार सुनिए. कांटों बेल्डू पॉम्प्लेमूसेज में रेलरोड कांटों बेल्डू पॉम्प्लेमूसेज में 79 साल की 79 years old की कुमारी जयवंती मनबोदना कुमारी जयवंती मनबोदना जिन्हें सतवंती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके घर रॉयल रोड कांटों बेल्डू पॉम्प्लेमूसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोली की शमशान भूमि ले जाएगी कमीशन टुमारो एट 11 AM. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो. मोर म्यूजिक इन द मिक्स.
2: आज आजादी है.
3: Bombay Talkies, Radio Musty.
4: Radio Musty.

और चलिए दोस्तों, रामायण फिल्म आजकल काफी चर्चाओं में है, जो दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म महाबली में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर आर्य बब्बर ने अपकमिंग फिल्म रामायण में यश के लुक पर अपनी राय दी है। ये फिल्म इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यश इसमें रावण का किरदार निभा रहे हैं। बब्बर ने यश के लुक पर कुछ सवाल उठाए और कहा कि उन्हें इसमें कुछ भी खास या अलग नजर नहीं आया। एक इंटरव्यू के दौरान बब्बर ने साफ किया कि सिर्फ ट्रेलर के आधार पर एक्टर के किरदार को आंकना कभी जल्दबाजी हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि यश का लुक उन्हें KGF फ्रेंचाइजी वाले लुक की याद दिलाता है। बब्बर ने कहा कि सच कहूं तो मुझे उनका लुक कॉस्ट्यूम के अलावा कुछ भी नया नहीं लगा। दाढ़ी वैसी ही है जैसे KGF में थी। रामायण में मुझे कोई नया लुक देखने को नहीं मिला। मैंने टॉक्सिक में उनका नया लुक देखा था, मगर इसमें वैसा कुछ नजर नहीं आया। एक्टर ने ये उम्मीद भी जताई कि यश इस किरदार में कुछ दमदार चीजें लेकर आएंगे। कुछ फिल्म देखने के बाद दर्शकों को अभिनेता का एक अलग पहलू देखने को मिल सकता है। बब्बर ने यश के लुक पर भले ही सवाल उठाएं, मगर उन्होंने इस बात की भी उम्मीद की है कि अभिनेता की पूरी परफॉर्मेंस रावण के किरदार को एक नया नजरिया देगी। सभी के लिए आर्या बब्बर, यस राज बब्बर के बेटे आर्या बब्बर, जिन्होंने यहाँ पर ये बात की एक इंटरव्यू के दौरान। महाबली में उन्होंने रावण का किरदार निभाया था और इसी के चलते उन्होंने यहाँ पर यश के लुक को लेकर अपनी राय जताई है। अब देखना ये होगा कि ये जो लुक है लोगों को कितना पसंद आता है, और इसके लिए हमें करना है दिवाली तक का इंतजार। चलिए दोस्तों, इस वक्त आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499 और 1294। अब्दुल एंड सायरा बानो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं आप। सो ये जो ब्यूटीफुल ट्रैक है आपके नाम, एंड यहाँ पर रोशनी, यस एवरीथिंग ओके ऑन माय साइड स्वीट हार्ट, उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक ठाक ऑन योर साइड एज वेल। ये जो खूबसूरत सा गाना है, इसे हम डेडिकेट कर रहे हैं फॉर यू रोशनी। इक्वली गोज आउट आपकी ओर से फॉर योर लव्ड वंस एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, इट्स 3:52 और थोड़ी ही देर में इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. यहाँ पर यशवंत जीतू जी कॉटेज से स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये है फॉर ऑल जतू फैमिली. ओके, इट्स यशवंत जतू और सभी जतू परिवार मोटा ब्लॉन्ग से साथ दे रहे हैं. एंड निर्मला जतू है और एक पुराना गाना आप सुनना चाहते हैं, लेकिन आई एम सो सॉरी, अभी के लिए आई एम जस्ट प्लेइंग द न्यू सॉन्ग्स. लेकिन आपकी रिक्वेस्ट है, हम जरूर फॉरवर्ड करेंगे एंड आई डू होप दैट यू गेट टू लिसन टू दिस गाना जो आपका फेवरेट गाना है. अभी के लिए साथ निभाने के लिए शुक्रिया एंड रेडियो मस्ती के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. हैप्पी बर्थडे टू आरोही सी तोहल ऑफ वाकवा, सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज. विशेस कमिंग फ्रॉम डैड एशले, मामा आशनी, सिस्टर आनवी, आर्या और साथ में है नानी, दादी पूर्णिमा है और दादा ईश्वर लाल है, पुपू प्रियंका एंड पुपा सलिल, नमीश, नमीशा और सभी रामबन, तौरा, गोकुल सिंह, रामप्रताप, भगवान, सीतोहल परिवार उन्हें विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. रोशनी हो गई है खुश खुश समझो ना गाना सुनकर. तो बस हम तो यही चाहते हैं कि आपके चेहरे की स्माइल हमेशा बनी रहे. स्प्लेंडेड वेदर एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, आप भी हमारे साथ कनेक्टेड है, सो थैंक यू सो मच अपाडू परिवार. अगला गाना होगा आपके नाम और आपके लिए ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स हम चलाते रहेंगे. साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन RM2 रेडियो मस्ती. और ऐसे ही आपके मैसेजेस, डेडिकेशन तो हम तक पहुंचते रहते हैं और उसके बाद कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स हम आप तक पहुंचाते हैं. तो चलिए दोस्तों, अब समय हो चला है कि मैं परी लूं आपसे अलविदा और मेरे बाद आ रही है गिनीशा लेकर योर अवतार वाइब्स आपके दिल को लुभाने के लिए कुछ और ब्यूटीफुल ट्रैक्स. तब तक के लिए साथ निभाते रहिए RM2 रेडियो मस्ती, हमेशा आपके साथ. एंड आपके कुछ जो दिल चाहे मैसेजेस हैं जो हम तक पहुँचते रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद. आपने हमें चुना, इसके लिए धन्यवाद और साथ निभाने के लिए थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.

0: आइए सुनते हैं समाचार अशिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। इलियोजी तोमा की हालत में सुधार हो रहा है, उन्हें होश आ गया है और अब उन्हें सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं है। ये खबर आज दोपहर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने दी। वे रोजवे स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट के उद्घाटन समारोह में बोल रही थी। आज सुबह अपनी पत्नी के समर्थन में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पहुंचे एमएसएम के नेता प्रवीण जगनाथ ने पिछले कुछ दिनों से द्वीप के कई इलाकों में बने तनावपूर्ण हालात पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। पिछले कुछ दिनों की बाधाओं के बाद आज बुधवार को आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक सामान्य हो गईं। ये जानकारी एमसीसीआई के महासचिव दृष्टि सिंह रामदेनी ने दी। हालांकि उनके अनुसार फिलहाल नुकसान का आकलन करना जल्दबाजी होगी। लेन देन में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि गतिविधियां लगातार जारी रहने से इस देरी की भरपाई हो सकेगी। उन्होंने मांग की कि कर्फ्यू के दौरान काम करने की अनुमति खाद्य ऑपरेटरों और कृषि खाद्य क्षेत्र के कारोबारियों को भी दी जाए, क्योंकि ये क्षेत्र 24 घंटे काम करता है। और नवरात्रि के अवसर पर मॉरिशस के कई मंदिरों और संस्थाओं में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों के माध्यम से मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जा रही है। कैटरबोन में 2 अलग अलग स्थानों पर रात के विशेष समय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बंगाली परंपराओं के साथ साथ युवा पीढ़ी तक धार्मिक संस्कृति पहुँचाने का प्रयास भी देखने को मिला। हम आपको बता देते हैं कि बैतो की त्रिमूर्ति सोसाइटी इस वर्ष भी मां दुर्गा भवानी के सम्मान में 9 दिवसीय श्री श्री दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। ये आयोजन बंगाली परंपरा पर आधारित है, जिसमें मां दुर्गा का स्वागत परिवार में लौटने वाली बेटी के रूप में किया जाता है। वहीं बासे रोड स्थित काली मां मंदिर में भी नवरात्रि का विशेष आयोजन किया गया। पिछले 20 वर्षों से मंदिर में श्रद्धालु पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। रात में आयोजित विशेष कथा में बड़ी संख्या में भक्तों हिस्सा लिया और मां दुर्गा के 9 रूपों की लीलाओं का श्रवण किया। मंदिर का उद्देश्य युवा पीढ़ी तक हिंदू संस्कृति और परंपराओं को पहुंचाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस भर में 10,000 लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हाई स्कूल के छात्रों के समर्थन में रैलियां निकाली। ट्रेड यूनियनों के अनुसार इन प्रदर्शनों में लगभग 4,80,000 लोग शामिल हुए। स्कूलों की स्थिति और पुलिस की कथित हिंसा को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच ये आंदोलन तेज हो रहा है, जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। वहीं शनिवार को महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत के विरोध में भी प्रदर्शनों की योजना है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.

वेल गाइस चोकियो टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली चार बज के सेवन मिनट्स हो चुके हैं. सो विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार जी. और गणेशा का प्रणाम. सो वेडनेसडे 14 अक्टूबर 2026 आप सभी लोगों

जो काम से निकल चुके हैं, यू आर हेडिंग बैक होम, हम हैं ना आपका साथ देने के लिए. सो हियर वी गो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड फॉर सम गुड म्यूजिक, गुड वाइब्स, सम लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज, एंड एज वेल वी आर गोइंग टू हैव अ गेम.

0: रेडियो मस्ती।
1: एगो यात्रा के मतलब है नवा अनुभव, अपन संगी वक्त बिताई के और हर पल के मजा ले के, और कबो कबो एगो बेहतरीन बिजनेस अवसर के फाइनलाइज करे के भी। उहे खातिर कोनो भी अनजान परेशानी के इस सब खास पल के मजा खराब नहीं होई दी है। सिकुम के स्पेशली डिजाइन ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान पर भरोसा करे, जिकर से अपन यात्रा बेफिक्र होके सकबा करे। यात्रा के पूरा मजा ली है सिकुम तोहर ध्यान रखी। हमनी से संपर्क करे या हमनी से भेंट करे खातिर sikum.mu पर जाई है। नियम आ शर्त लागू बाटे। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: सच अ ब्यूटीफुल एंड लवली सॉन्ग लेकर आई है खासकर आप लोगों के लिए. हाँ जी मेरे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश एंड आई होप दैट एवरीवन इज गोइंग गुड. आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आपका दिन भी बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत तरीके से गुजर रहा होगा. तो बस ऐसे ही अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रखिए और अपने दिल को थोड़ा रिलैक्स कीजिए और खूबसूरत पल को आप एंजॉय कर लीजिए जो हम लेकर आए हैं खूबसूरत गानों के जरिए जो पेश कर रहे हैं इन योर रफ्तार वाइब्स, क्योंकि लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ ही तो हमारे दिन को स्पेशल बना देते हैं, है ना. सो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम हैं आपका साथ देने के लिए. प्यारी सी बातें करेंगे, सूदिंग म्यूजिक और ढेर सारा प्यार लेकर आई है आप लोगों के लिए. सो कीप ऑन स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप ऑन लिसनिंग. ऐसे यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती, जिसमें जिसका एक्चुअली हम आपके फीलिंग्स का ख्याल बहुत रखते हैं, जहां हर पल में है थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी खुशी और बहुत सारा सुकून. तो चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे टू ऑल दोस्ट जो अभी सफर में है, घर की तरफ जा रहे हैं काम के बाद.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

Thank you so much, Isadi Nikileha, for choosing us as your radio partner. Yes, you're listening to Ginisha right now on RM2 Radio Masi. To all those who are driving, drive carefully. Aram se gaadi chalana. Dheere dheere, hole hole. Ji haan, bas ghar pahunchna. And always remember that we are here to give you one of the loveliest company right now with these beautiful gaane. Aur jaise ki pehle thodi der pehle hai, I told you that we'll be having a game. So why not? We are going to kickstart a lovely game. Aap logon ke liye. Ji haan, dosto. Hamare pyare pyare jitne listeners is waqt hamara साथ दे रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे जरूरी है कि हम अपना हौसला बनाए रखें. लाइफ में जब भी कोई परेशानी आती है, कोई भी बुरा वक्त आता है ना, तो हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए. परेशान होने की बजाय शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए. ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट बैक टू द गेम. अभी सो माय डियर, अभी के लिए यू जस्ट हैव टू प्ले विद अस ऑन RM2 रेडियो मसी एंड यू कैन विन अ वाउचर वर्थ 1500 रुपीस पर गेम. यानी कि अभी के लिए, आज के लिए आप जीत सकते हैं. सो यस, अगर आप जीतना चाहेंगे सो जस्ट पार्टिसिपेट. सो गेट रेडी टू सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ दांडिया वेव सेंटर पॉइंट एंड इट्स गोइंग टू हैपन दिस सैटरडे. इस सैटरडे को 17 ऑफ अक्टूबर आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कैसा इवनिंग जो बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स के साथ होंगे, फेस्टिव बीट्स और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स एट सेंटर पॉइंट जो है अथ्रियानो, और वो भी शाम के 6 बजे से. सो अभी के लिए इट्स अ चांस टू विन, सो टेक पार्ट इन आवर रेडियो गेम एंड यू कैन विन अ वाउचर वर्थ 1500 रुपीज. 1500 रुपए का वाउचर ऑफर बाय सेंटर पॉइंट, जहां हर ताल में है जश्न और हर कदम में है रंग. सो सेंटर पॉइंट डांडिया नाइट, वन इवनिंग वन रिदम वन एक्सपीरियंस. इट्स एन एक्सपीरियंस to leave. और अगर आप वहां पे जाना चाहेंगे so why not, you can just join in. और अभी के लिए I've got you this voucher. आप को सुनाएंगे एक प्यारा सा गाना. आपको बस मुझे बताना है who is the singer of this beautiful track. सिंगर का नाम क्या है? 5499 12 94 पर send me the right answer, full name, full address के साथ. Then only you're going to be eligible to participate in the game. Try your luck. Send me the right answer. Who is the singer of this beautiful song that you can hear right now, right away on RN2 Radio Masti?

0: आ रही है। You see, keep running home boy.
1: Damn.
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
3: OM2
4: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट
5: स्पोर्ट्स न्यूज
6: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
7: Wednesday, 14th of October 2026, 4:43 on RM2 Radio Masti. Chaliye ji, let's go for some latest sports news. Hamare sports guru ke saath. Good afternoon, Arvind ji.
8: Good afternoon, aapko. Good afternoon, RM2 listeners. The latest from the sports world. Vaise, kal, aaj, parso, wahi baat chal rahi hai, wahi kahani sunai ja rahi hai. Kabhi Liverpool ki haar, to kabhi Manchester United ki haar. अब दोनों की हार हो रही तो क्या लड़ाई, चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। हम बात कर रहे थे चैंपियंस लीग, बात कर रहे हैं चैंपियंस लीग के बारे में। सुबह बात कर रहे थे तब बताया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार हुई, फिर आर्सेनल की जीत हुई, तो आज क्या होगा किसको पता, मैच के बाद ही पता चलेगा। तो आज मैच जो होने वाले हैं, फिक्स्चर्स आपको बता दें, फेयेनोर्ड कोमो और लास्क जो ऑस्ट्रिया की टीम है उसका मुकाबला लिवरपूल से है। लिवरपूल के लिए अवे मैच, ये मैच होंगे एट 8:45, सो अर्ली किक ऑफ कहा जा सकता है। लिवरपूल के लिए आज काफी खिलाड़ी इंजरी के कारण नहीं खेल पाएंगे, इनमें गाकपो हैं, जोबोस्लाई हैं, ईसाक हैं और बाकी खिलाड़ी तो घायल थे ही, लेकिन खासतौर पर जोबोस्लाई और गाकपो की अनुपस्थिति लिवरपूल के लिए बहुत घातक साबित हुई अभी हाल ही में जो मैनचेस्टर सिटी वाले मैच में है। तो आज कुछ नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जाएगा LAS के टीम के खिलाफ। अन्य मैचों में एस्टन विला खेलेगा फेनेरबाचे के खिलाफ, बोडो ग्लिम्ट बोरुशा डॉर्टमुंड, ये मैच मैनचेस्टर सिटी पेरिस सेंट जर्मेन दो मालामाल टीमों के बीच, फिर बेटिस एफसी पोर्टो, रोमा रियल मैड्रिड, शाख्तार डोनेत्स्क एके एथेंस, फिर स्लोवान वर्सेस स्टुटगार्ट। इस चैंपियंस लीग के लीग स्टेज में अभी तक जो जिन टीमों ने दो मैच खेल लिए हैं इनमें बार्सिलोना 6 अंक लिए पहले पोजीशन पर है, गोल डिफरेंस प्लस 7, उसके बाद आता है स्पोर्टिंग 6 अंक गोल डिफरेंस प्लस 4 और आर्सेनल आता है 6 अंक गोल डिफरेंस प्लस 4। बायर्न म्यूनिख ने कल

0: मैच ड्रॉ किया था तो उसके पास हैं 4 अंक, फिर पेरिस सेंट-जर्मेन, कोमो, स्टुटगार्ट, ये सब, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल आज खेलेंगे तो कुछ हेर फेर हो सकता है इस टेबल में। मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल डिफरेंस 2 है उसका, 2 मैच खेलने के बाद उसके पास 3 अंक हैं। यूनाइटेड अभी के लिए 7वें पोजीशन पर हैं, जबकि लिवरपूल जो 1 मैच खेलकर 3 अंक लिए वो अभी 15वें स्थान पे हैं। तो आज के मैच के बाद लीग टेबल में चेंजेस होंगे ज़रूर। तो ये चैंपियंस लीग को लेकर हैं और काफ़ी अन्य मैच भी खेले जाएंगे, जैसे इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में जहां पर नोविच का मुकाबला साउथम्पटन से, पोर्टसमुथ शेफील्ड यूनाइटेड, क्वींस पार्क रेंजर्स डर्बी, लिंकन वेस्ट हैम यूनाइटेड कल भी मैच खेले गए थे। अभी के लिए 10 मैचों के बाद स्वांसी 2 अंक आगे हैं मिडलसब्रो से, 2 अंक आगे, फिर तीसरे स्थान पे हैं 17 अंक लिए बर्मिंगहम, वेस्ट ब्रोम के पास भी 17 अंक हैं, वेस्ट हैम के पास हैं 16 पॉइंट्स। वेस्ट हैम जो आज लिंकन के खिलाफ ए हुए मैच खेलने वाली हैं, तो वेस्ट हैम के लिए एक जीत उसे काफ़ी ऊपर ला सकता है अप टू 19 पॉइंट्स तीसरे स्थान पर। तो ये चैंपियनशिप स्पेन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच आज खेला गया, जिसमें मैच ड्रॉ गया 2-2। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच भी मैच ड्रॉ गया 2-2। ये इंटरनेशनल वीमेन फ्रेंडलीज खेले गए। और इंडियन सुपर लीग में आज मैच होगा पंजाब और ओडिशा के बीच। टेरिस शंघाई मास्टर्स के लिए आज दिन के दौरान कुछ मैच खेले गए, इनमें जुदा, स्पेन के जुदा ने वांडे जांचक्लब को हराया 6-4, 6-7, 6-4, 6-2 से। फिर रूद अभी खेल रहा है, रूद की जीत हुई वैसे ओग अलियासिमे के खिलाफ, रिटायर्ड ओग अलियासिमे, तो रूद अगले राउंड में पहुंच गया। मेदवेदेव ने सित्सिपास को हराया 6-4, 7-5। और थोड़ी देर बाद मैच होगा पोल और बर्ग्स के बीच। डबल्स के भी मैच खेले गए महिला कैटेगरी में, WTA वुहान ओपन में राउंड ऑफ 32 में श्वातेक ने फ्रेच को हराया 6-2, 6-1 से। मुचोवा की भी जीत हुई, उसने मकनाली को हराया। ओस्तापेंको ने पेगुला को हराया। साबालेंका की जीत हो रही है अभी आनली के खिलाफ, बहुत मैच अभी खेले जा रहे हैं। पाउलिनी ने अपना मैच जीत लिया है, वितोलिना की भी जीत हुई, फिर गुओ ने भी अपना मैच जीता वोलिनेट्स के खिलाफ। ये वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट है। और क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 4th वनडे मैच नहीं बल्कि T20 मैच आज खेला जाएगा। पहले जो 3 मैच खेले गए थे उसमें 2 मैच भारतीय टीम के हक में, तो अभी सीरीज लीड कर रहे हैं भारतीय टीम 2-1 से। आज का मैच अगर भारतीय टीम जीत लेती है तो ये सीरीज उसके नाम, और अंतिम मैच भी अभी खेलना है। तो आज ये 5:30 बजे ये मैच होगा हैदराबाद में, टीम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। भूलिएगा नहीं, चैंपियंस लीग की रात है आज, लिवरपूल LAS के टीम के खिलाफ, और द बिग वन विल बी मैनचेस्टर सिटी वर्सेस पेरिस सेंट-जर्मेन। 2 चैंपियन के बीच मुकाबला, देखते हैं क्या होगा। Have a nice time listening Radio Musti and take care. Bye bye.
1: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
2: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Decor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Decor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
3: Raftar Vibes. Filmy Rides.
4: RM2.

0: Join the Radiovasi team for a grand, unforgettable Diwali night. 14th of November at Balanchina Hall, rooftop Phoenix. Karenge masti, karenge dhamal. Who's joining the party? Ab agar ye hai sawal, to saath dene ke liye aa rahe hain Bollywood singers Vineet Singh aur Anita Bhatt. Bollywood ka music karenge rock and roll. Hoga international DJ, bajenge dhol. Also joining in are local DJs DJ Neil K and DJ Spike EV.
1: Crewmania Dance Academy aur honge selfie corners.
0: The Grand Diwali Night as from 6 PM at Valentina Hall, rooftop, Phoenix.
1: Radio Masti ke RJs ke saath hogi full on entertainment.
0: Great surprises, Bollywood vibes aur Diwali ki mithai ke saath mithas hi mithas. Tickets on sale on utaya.com. So book the date 14th of November as from 6 PM. The Grand Diwali Night at Valentina Hall, rooftop, Phoenix with Radio Masti.
1: Grand Diwali Night 2026, sponsored by Valentina Hall in collaboration with Luxury Distributors Limited.
2: तो चलिए जी 4:54 हो चुके हैं और इट्स टाइम टू अनाउंस आज का लकी विनर हुज विनिंग द वाउचर वर्थ ऑफ 1500 रुपीस ऑफर टू यू बाय सेंटर पॉइंट. सो माय डियर, हमने पूछा था एक बहुत ही आसान सा सवाल कि ये जो गाना आप सुन रहे हैं ऑन आवर टू रेडियो मस्ती ओ सनम, सिंगर का नाम क्या है, हमने पूछा था ये सवाल. बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग. जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. लेकिन एज यूजुअल आपको तो पता ही है कि ऑफकोर्स इट्स ओनली वन लकी विनर व्हेन वी डू द लकी ड्रॉ. और आज का हमारा लकी विनर है, पहले हम आपको सही जवाब देते हैं. सिंगर का नाम है लकी अली, ऑफकोर्स इट्स लकी अली. 2002 में ये गाना रिलीज हुए थे, बिल्कुल जी, इससे भी पहले की शायद. सो लकी अली का ये गाना

हमने पूछा कौन था सिंगर और सही जवाब देने पर आज का लकी विनर जिसका नाम निकल आया है हमारे लकी ड्रॉ में वो है हमारी प्यारी सी एक लकी विनर है प्रीता मंगरू और वो रहती हैं कौंदमास।

0: So congratulations to my dear. You are winning this lovely gift. It's a voucher worth 1,500 rupees offered to you by Centrepoint. Jihan, you said it right. It's Lucky Ali. And this song released in 1996, Jihan, from the album Suno. So congratulations to you. And yes, there will be someone calling you from the embassy to let you know how you are going to win this lovely voucher. So thank you so much for participating. और फिलहाल के लिए हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:56 हो चुके हैं. थोड़ी देर में हम भरेंगे इंग्लिश के न्यूज फ्लैश न्यूज की ओर और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri. Ratri.
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
3: RM2

Welcome in the second hour of this beautiful show. जी हाँ दोस्तों, that's your Raftaar Vibes happening on RM2 Radio Masti. 5:34 हो चुके हैं. सो गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है फिर से इस खूबसूरत से शो में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने दिन को एक प्यारे स्माइल के साथ एंजॉय कर रहे होंगे एंड एंड भी करेंगे स्माइल के साथ. क्योंकि जस्ट बी पॉजिटिव गाइस, लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन जब अपनों का साथ होता है, यू हैव अ पॉजिटिव माइंड, सो यू बिलीव इन गॉड, आई गेस नथिंग एंड गो जस्ट बी ऑन दैट. जी हाँ, कभी कभी बस एक अच्छा सा गाना या प्यारी सी बातें या किसी अपने की आवाज़ ही दिल को सुकून देने के लिए काफ़ी होती है ना. सो बस अपने आप को आप सुकून दीजिए और एन्जॉय कीजिए अगला गाना जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. तो आज के इस खूबसूरत पल में अपनी सारी जो वरीज हैं उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और रिलैक्स कीजिए और इस मोमेंट को आप एन्जॉय कीजिए विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑन RM2 रेडियो मस्ती. मैं हूँ गिनिशा, आपका साथ देने के लिए. और चलिए इस सफ़र को बनाते हैं और भी स्पेशल, सिर्फ प्यार और प्यार के साथ. कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड मेरे प्यारे लिसनर्स, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: RM2, फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: बिल्कुल जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम है कि हम आपको फैशन की दुनिया में लेके जाएं। एंड यस, आई हैव अ छोटा सा लिटिल फैशन टिप्स फॉर यू। सो माय डियर एंड लवली लिसनर्स, आज का छोटा सा फैशन टिप है कि कीप इट स्माइल, कीप योर स्माइल एंड कीप इट वेरी ब्यूटीफुल एंड कीप इट सिंपल बट मेक इट स्टाइलिश, है ना। और ये जो सबसे मेन एक्सेसरी होते हैं ना आपका स्माइल, उसको पहनना ना भूलिए। अपने आउटफिट के साथ एक क्यूट सा एक्सेसरी आप ऐड कर सकते हो। और जैसे एलिगेंट ईयर रिंग्स होते हैं, प्रीटी वॉच होते हैं, और याद रखें कि फैशन सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से नहीं अच्छा दिखते हो आप पहनने के बारे में नहीं होता है, बल्कि अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करने के बारे में भी होता है। गुड पर्सनालिटी एंड फैशनेबल, सो ड्रेस अप गुड, स्माइल ब्राइट एंड लेट योर पर्सनालिटी शाइन। सो स्टे ट्यून्ड माय डार्लिंग्स एंड फॉर मोर लवली टिप्स एवरी आफ्टरनून ऑन RM2 रेडियो मस्ते इन योर अफ्तार वाइब्स।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: 14 अक्टूबर 2026 बुधवार का दिन इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश के कुछ इलाकों में कर्फ्यू के बावजूद कल रात फिर अशांति की घटनाएं हुई। पुलिस ने कुल 93 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें 15 नाबालिग शामिल है। 43 लोगों को आज अदालत में पेश करने के बाद फिर से पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कर्फ्यू को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। किन लोगों को बाहर निकलने की अनुमति है और जिन इलाकों में पाबंदी नहीं है वहां आने जाने के क्या नियम हैं? पुलिस प्रेस ऑफिस ने इन सवालों का जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों की अशांति के बाद देश में व्यापारिक गतिविधियां काफी हद तक सामान्य हो गई हैं। संस्थाने खाने पीने की चीजों के उत्पादन से जुड़े उद्योगों को भी कर्फ्यू के दौरान काम करने की अनुमति देने की मांग की है। मॉरिशस में इन दिनों आस्था और भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तेलुगु समुदाय भगवान वेंकटेश्वरा की आराधना में 40 दिनों का व्रत रख रहा है। वहीं नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। भारत के बिहार राज्य में गंगा नदी में नाव पलटने से 13 बच्चों की मौत हो गई। वैशाली जिले में हुए इस हादसे के बाद कई लोगों को सुरक्षित बचाया गया जबकि लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी रहा। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। कर्फ्यू के बावजूद देश के कुछ इलाकों में कल रात फिर अशांति की घटनाएं सामने आई। हालात को संभालने के लिए पुलिस को कई जगह कार्रवाई करनी पड़ी। इन घटनाओं के सिलसिले में कुल 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें 15 नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों में से 43 को हिरासत में रखा गया है। इन्हें आज अलग अलग जिला अदालतों में पेश किया गया और फिर से पुलिस सेल में भेजा गया। देश के कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद कल रात कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की विशेष बैठक हुई जिसमें देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश में सरकार के फैसलों की जानकारी दी। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: Le film gagne l'information de plusieurs sources concordantes qu'il y a un groupe d'immun.
2: विभिन्न स्रोतों से जानकारियां मिली हैं कि इस हिंसा के पीछे कुछ लोग हैं जो लोगों को हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। उनका मकसद है देश में तनाव को बढ़ावा देना ताकि शांति और व्यवस्था भंग हो। पुलिस के अनुसार इन लोगों को ड्रग टस्कर पैसा देकर ये काम करवा रहे हैं। वे खुद को पुलिस की कार्रवाइयों से खतरा महसूस कर रहे हैं। पुलिस को पता है कि ये लोग कौन हैं। पुलिस जरूरी कदम उठा रही है। पुलिस और SMF देश की एकता को भंग करने वालों के खिलाफ तैयार हैं। पुलिस ताकत सख्ती से पेश आएगी। कई झूठे वीडियो और मैसेजेस प्रसारित किए जा रहे हैं जिनसे और

0: शांति फैल रही हैं, मैं मीडिया से जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की मांग करता हूं कि वे अपनी खबरों की अच्छी तरह जांच करें। प्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है शांति बनाए रखने में, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब झूठी खबरें फैलाना नहीं है। मैं रेडियो और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने वालों से अपील करता हूं, चाहे वे राजनीति से हो या प्रेक्षक, कि वे अपनी बातों की गंभीरता पर ध्यान दें और परिणामों पर अच्छी तरह सोच विचार करें, अपनी बातें शांति फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि हर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून का पालन करते हुए प्रयोग करें। मैं सभी मॉरिशनों से कहता हूं कि पुलिस कर्मी भी मॉरिशन हैं, उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं। एक पुलिस कर्मी ने एक ऐसी करतूत की जिसे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए मॉरिशस के सभी पुलिस कर्मियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस जनता की सेवा के लिए है, वो अशांति फैलाने के लिए नहीं बल्कि हर एक मॉरिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। मेरा संदेश स्पष्ट है, हम आग लगाने वालों को पहचानेंगे जो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना होगा। लोगों ने गैर कानूनी काम किया है, किसी को भी हमारे देश की सामाजिक शांति को भंग करने नहीं देना चाहिए।
1: Mais nous pas capable de rendre toute la police Maurice responsable. La police est au service de la population. Elle n'est pas là pour faire des ordres, elle est là pour assurer la sécurité sac mauricien. Mon message est clair et sans concession. Nous pour identifier ban incendiaire, ban di moun qui peut agir contre l'intérêt de nos pays. Et je peux bien répondre. Du monde qui ne fait un acte illégal pour subir une conséquence bien lourde de cette action antipatriotique méritée. Pas les personnes attaquent notre tissu social et la paix dans nos pays.
2: Khabron ko aage badhate hain. देश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए कल गुरुवार 15 और शुक्रवार 16 अक्टूबर को मॉरिशस के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक नर्सरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले स्कूलों के साथ साथ तकनीकी और प्रशिक्षण केंद्र भी बंद रहेंगे। इनमें आईटेट, MITD और MIE की ऑनलाइन क्लासेस भी शामिल हैं। वहीं मॉरिशस, रोड्रिक्स और अगालीगा में इन दो दिनों के लिए तय ग्रेड 4, ग्रेड 5 और NCE की परीक्षाएं आगे के लिए टाल दी गई हैं। नई तारीखों की घोषणा बाद में होगी। हालांकि SC और HSC की अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाएं तय टाइम टेबल के अनुसार ही होंगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और स्कूल दोबारा कब खुलेगी इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। इस बीच महिला समानता और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की कि कल गुरुवार 15 अक्टूबर को सभी नर्सरियां भी बंद रहेंगी। कर्फ्यू को लेकर लोगों के मन में कई सवाल, आखिर कुछ ही इलाकों में कर्फ्यू क्यों लगाया गया है, इस पर हम थोड़ी देर में एक बार फिर पुनः लौट कर आएंगे। पिछले कुछ दिनों की शांति के बाद आज देश में व्यापारिक गतिविधियां काफ़ी हद तक सामान्य हो गई हैं। मॉरिशस चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव दृष्टि सिंह रामदेनी के मुताबिक पिछले दिनों लेन देन में कमी आई है, लेकिन आर्थिक नुकसान का अभी सही अंदाज़ा लगाना जल्दबाजी होगी। उन्हें उम्मीद है कि कामकाज जारी रहने से इस कमी की भरपाई होगी। साथ ही उन्होंने मांग की है कि खाने पीने की चीज़ों के उत्पादन से जुड़े उद्योगों को भी कर्फ्यू के दौरान काम करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इस सेक्टर में 24 घंटे काम होता है। देश के कई इलाकों में पिछले दिनों से जारी तनाव के बीच MSM नेता प्रवीण जगन्नाथ ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज सुबह अपनी पत्नी कोबिता जगन्नाथ के समर्थन में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात पर ये प्रतिक्रिया दी। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी कोबिता जगन्नाथ

0: आज तीसरी बार पूछताछ के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पहुंची। मामला फरवरी 2025 में छापेमारी के दौरान दो सूटकेसों से बरामद 114 मिलियन रुपए से जुड़ा है। इसी मामले की जांच के सिलसिले में एफसीसी के अधिकारियों ने आज उनसे एक बार फिर पूछताछ की।
1: करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के अफसरों ने कुबिता जगनाथ के साथ नए सिरे से पूछताछ की। फरवरी 2025 में

0: beaucoup. Mais comment moi, je c'est une longue enquête. Nous pas pour finir d'un jour. Deux sessions avant, une autre session aujourd'hui. Nous prenons encore dans les autres sessions de travail. Nous prenons la question que vous posez et Madame Jagnat pourrait venir.
1: दिन के दौरान वे एफसीसी के मुख्यालय से रवाना हुई, किसी और तारीख पर उन्हें फिर से बुलाया जाएगा।
2: एलर्जी तो मां की सेहत को लेकर राहत की खबर, उनकी हालत में सुधार हो रहा है, उन्हें होश आ गया है और अब सांस लेने के लिए मशीन की मदद की जरूरत नहीं है। ये जानकारी आज दोपहर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिजू ने दी। वे रोजबेल के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री का बयान, इस पर पेश है ये रिपोर्ट।
3: Là, une bonne nouvelle, moi, annonce d'autre. Avant, mon vini, mon jeune médecin, elle le dit, inassisé, zoji. Il fallait assiser, inassisé. Elle ne s'est pas venue dire à moi, qui m'a dit, ben, besoin de photo pour montrer au public. J'ai besoin de confiance, qu'il peut assiser. Et j'ai besoin de comprendre, ben, l'opération aussi dangereuse, aussi importante que ça, ou pas capable de permettre n'importe qui s'en là, aller à mettre le micro du vendredi pour demander qu'il m'a été senti. Et là, ça aspire, comment on appelle ça, une confidentialité des patients. Et deuxième, infection. Le besoin comprend, il y a une grande opération, le besoin garde bien comment il était, laisse-le finir par lui-même, dit quand il commence à causer, quand il commence à marcher, la public, et surtout son papa, son maman, et puis, je finis de dire qu'il nous cause à nos enfants, nous aide à nos enfants, tout ça, là. Et son mission de causer. Parce qu'il y avait un plus meilleur preuve que ça, si je pas trust nous, mais là, voilà une bonne nouvelle qui est assisée. Tout ça, l'appareil, il tirait, l'appareil, il fait tirer.
2: अपनी किताबों के जरिए लोगों को जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करने वाले मशहूर लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शिव खेरा इंद्रो मॉरिशस में हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीर नाम गुलाम से मुलाकात की। शिव खेरा इस शुक्रवार एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे जिसमें मुश्किल हालात का सामना करने और अपनी क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ने पर चर्चा होगी। साह ओनो कुणाल गोजी, करुणा लालू।
4: लेखक, वक्ता और लीडरशिप के विशेषज्ञ शिव खेरा व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता पर आधारित अपनी पुस्तक यू कैन विन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ शिष्टाचार के नाते भेंट की। इस अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के अनुसार युवा देश के विकास के लिए एक अहम ताकत हैं। उन्होंने शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया ताकि भविष्य के नेताओं को तैयार किया जा सके।
5: There was a study done on 1,000 companies and it was found that 60% of these companies fired Gen Z within first few months of hiring. Communication skills, attitude, integrity, taking for granted, team spirit. People who have succeeded and they have sustained success and maintained goodwill, they've lived by this one principle, and that is, I shall always give more than what I get. To my family, to my organization, to my company, to my customer, and to my country. You live by this principle, you become the competition, you have no competition.
4: Shiv Khera is Shukravar, 16 October ko La Pirogue mein Mauritius Institute of Directors ki pehal par aayojit ek sammelan ka sanchalan karenge. जिसकी थीम होगी टर्निंग सेटबैक्स इनटू कमबैक्स, द विनर माइंडसेट, यानी असफलताओं को वापसी की सफलता में बदलना विजेता की सोच।
2: रोजवेल के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम। आज दोपहर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिजू ने अस्पताल की नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जल्द ही करीब 100 डॉक्टरों और 60 इमरजेंसी स्पेशलिस्ट नर्सों की भर्ती की भी घोषणा की। डायबिटीज को लेकर मॉरिशस के लिए एक अच्छी खबर, देश इस बीमारी से प्रभावित लोगों का प्रतिशत देश में इस बीमारी से प्रभावित लोगों का प्रतिशत कम हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मैगजीन द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक साल 2009 में डायबिटीज की दर 23.3% थी, जो 2021 में घटकर 19.9% रह गई। प्री डायबिटीज के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। खास बात है ये है कि महिलाओं में डायबिटीज की में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। माधवी जगन्नाथ, गीता स्नारायण।
1: न्यूघोव स्थित ये विशेष क्लिनिक उन 5 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में से एक है जिन्हें

0: टाइप 2 डायबिटीज के उपचार और देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फौजी पिखाली कहते हैं, मुझे चोट लगी थी, अस्पताल गया तब पता चला कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज है, तब से सभी इलाज करवा रहा हूँ, आँखों की जाँच आदि करवा रहा हूँ। ये बीमारी आमतौर पर वयस्क अवस्था में धीरे धीरे विकसित होती है। इसमें रक्त में शक्कर यानी ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है। डॉक्टर मोहम्मद यासिर उजिया कहते हैं,
1: अगर किसी को 8% से ज्यादा डायबिटीज का पता चलता है तब उन्हें डायबिटीज सेंटर भेजा जाएगा, जहां उन्हें ज्यादा गहन सेवा दी जाएगी, जिससे उनका डायबिटीज नियंत्रित किया जा सके। फिर उन्हें उनके इलाके के हेल्थ सेंटर में भेजा जाएगा।
0: प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिका द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में हाल में ही प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मॉरिशस में 12 वर्षों के दौरान मधुमेह के मामलों में 3% की अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि हालिया सर्वे में टाइप 2 डायबिटीज घटकर 19.9% तक पहुंच गया है। पहले ये 23.3% था और प्री डायबिटिक के लिए भी ऐसा ही है। 2009 में ये करीब 24.9% था और 2021 में किए गए सर्वे में ये 15.6% थी।
2: Donc là aussi nous fin trouve une stabilisation et ensuite une réduction de la prévalence des diabètes.
0: चिकित्सा के क्षेत्र में मिली ये उत्साहजनक सफलता आपसा इंटरनेशनल जैसे गैर सरकारी संगठनों के लिए भी प्रेरणादायक है। ये संगठन 3 वर्षों से ज्यादा समय से टाइप 2 डायबिटीज के खिलाफ लड़ाई में जुटा हुआ है। आपसा इंटरनेशनल की अध्यक्षा उद्रे अज कहती हैं, हमारे यहाँ सकारात्मक नतीजे देखे जा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, वे अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सजग हैं। मॉरिशियनों को जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज खामोशी से फैलने वाली बीमारी है। इसके सिम्टम्स नजर नहीं आते और हमेशा इस जाल में लोग फंस जाते हैं। जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, जटिलताएं शुरू हो जाती हैं। समय रहते जाँच करवा लेनी चाहिए। उचित उपचार और सही देखभाल से मरीजों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।
3: डायबिटीज को काबू में रखना और इससे होने वाली गंभीर परेशानियों से बचना, इसी मकसद से मॉरिशस में एक नई पहल शुरू हुई है। गैर सरकारी संस्था ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ लोगों को बेहतर खान पान और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जागरूक करेगी। लक्ष्य है साल 2035 तक डायबिटीज के मामलों में 5% की कमी लाना। इसके लिए संस्था स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करेगी और उनकी सेहत से जुड़ी जरूरतों को समझने के लिए अध्ययन भी करेगी। आत्मसंयम और मन की शुद्धि का एक पवित्र पर्व मॉरिशस में तेलुगु समुदाय इन दिनों भगवान वेंकटेश्वर की आराधना में लीन है। भगवान विष्णु के इस स्वरूप की उपासना के लिए श्रद्धालु 40 दिनों तक व्रत रखते हैं और पूजा पाठ के साथ अपने जीवन में अनुशासन और सादगी का पालन करते हैं। देश भर के मंदिरों में हर दिन प्रार्थनाएं हो रही हैं, जहां भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। आस्था की ज्योत, भक्ति का संगम और नई पीढ़ी तक पहुंचती सदियों पुरानी परंपराएं। नवरात्रि का आज 4वां दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना का दिन। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मॉरिशस में भी इन 9 दिनों के दौरान मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं में पूजा पाठ का वातावरण है। कैटरबोन में 2 स्थानों पर रात के समय विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बंगाली रीति रिवाजों के अनुसार दुर्गा पूजा के साथ युवा पीढ़ी को देवी मां की कथाओं और धार्मिक संस्कृति से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। ये परंपरा पिछले 47 वर्षों से चली आ रही है। बैतूल की त्रिमूर्ति सोसाइटी इस वर्ष भी माँ दुर्गा भवानी के सम्मान में 9 दिवसीय श्री श्री दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। यह आयोजन बंगाली परंपरा पर आधारित है, जिसमें माँ दुर्गा का स्वागत परिवार में लौटने वाली बेटी के रूप में किया जाता है। इस भव्य आयोजन की तैयारियाँ जून महीने से ही शुरू हो गई थी।
4: हम लोग बंगाल मतलब कलकत्ता के है, वेस्ट बंगाल, और हम लोग कलकत्ता में हमारे बड़े पूर्वज लोग आए थे, उसी परंपरा से ये दुर्गा पूजा चल रहा है। हमारी दुर्गा पूजा पूरा बंगाली विधि से

और दूसरी बात ये कि ये दुर्गा पूजा तंत्र तंत्र शक्ति से और तंत्र विधियों से होता है, तंत्र विधियों से। तंत्र विधि से मतलब ये कि हमारी जो देवी हैं, दुर्गा जो हैं, क्या वो महाकाली क्या वो दुर्गा जी हैं, वो सब तंत्र शक्ति से ही होता है। और इस शारद नवरात्रि में दुर्गा जी की हम लोग पूजा चंडी रूप में मानते हैं, मतलब कि चंडिका के रूप में। ऐसे दुर्गा माँ को सभी लोग माँ कहते हैं, लेकिन हमारे बंगाली परिवार में दुर्गा जी बेटी बन करके पिता के घर आते हैं। अभी वो हमारे साथ रहेंगे दसवीं तक, फिर दसवीं के बाद वो अपने पति के घर में जाएंगे। तो जाने से पहले जितनी भी सेवा हो सके विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं।

0: इस वार्षिक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। माँ दुर्गा की आराधना के दौरान भक्तों में विशेष उत्साह और भक्ति देखने को मिली।
1: क्योंकि छुट्टी से लेकर आज तक हम माँ की सेवा करते हैं और जैसे कि आपको पता है वो माँ के रूप नहीं आती, वो बेटी के रूप आती है, तो हम उसकी स्वागत धूमधाम से करते हैं और हर साल यही वेट करते हैं कि वो आए और हम उसकी सेवा करें।
0: सायंकालीन कार्यक्रम में पारंपरिक बंगाली ढुली नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। युवा कलाकारों ने ढाक नामक पारंपरिक ढोल की गूंज के बीच सुगंधित धूप से भरे पात्रों के साथ ये भक्तिमय नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं बासेरोड स्थित काली माँ मंदिर में भी नवरात्रि का विशेष आयोजन किया गया। पिछले 20 वर्षों से मंदिर में श्रद्धालु पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से इस पर्व को मनाती आ रही हैं। रात में आयोजित विशेष कथा में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया और माँ दुर्गा के नौ रूपों की लीलाओं का श्रवण किया। मंदिर का उद्देश्य युवा पीढ़ी तक हिंदू संस्कृति और परंपराओं को पहुँचाना है। इसके साथ ही माँ दुर्गा की मूर्ति का पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश भी देता है।
2: जो नुवा जेनरेशन बा ओकर मजा एनकरेज करना जैसा कि हमने के मजा आवे के संगे हर मूर्ति बनाए के हम हमने के गांव के मजा के रोशन करे के मंदिर के हमने के लास्ट जाता नौजवान जो अब उठता छाग मजा ई परंपरा स्वीप करे के।
0: दो स्थान आस्था की दो अलग अलग अभिव्यक्तियां, लेकिन उद्देश्य एक ही है, नवरात्रि की परंपराओं को जीवंत रखना और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना।

0: नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की आराधना का दिन। भारत की मंदिरों में पूजा अर्चना और मां दुर्गा के जयकारों के बीच भक्ति का माहौल है। वहीं भव्य पंडालों में कहीं महाभारत के प्रसंग जीवंत हो उठे हैं तो कहीं दुनिया के प्रसिद्ध मंदिरों की झलक देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल तक आस्था, कला और संस्कृति के अनोखे रंगों के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है।
1: नवरात्रि का आज चौथा दिन समर्पित है मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा को सृष्टि की रचना करने वाली देवी माना जाता है। उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की मान्यता है। मां के इस स्वरूप को शक्ति, प्रकाश और जीवन का प्रतीक माना जाता है। भारत के अलग अलग मंदिरों में आज श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में भी नवरात्रि की रौनक है। पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। नवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। कोलकाता के सोल्ट लेक इलाके में इस बार महाभारत की कहानी जीवंत हो उठी है। इसी ब्लॉक के दुर्गा पूजा पंडाल को महाभारत के प्रसंगों के आधार पर सजाया गया है। कलाकारों ने इस प्राचीन महाकाव्य के दृश्यों को अपनी कला के जरिए फिर से पेश किया है। खास बात यह है कि यहां दुर्गा पूजा के आयोजन के 50 साल पूरे हो रहे हैं। त्रिपुरा में दुर्गा

0: पूजा की तैयारी को एक कलाकार ने बेहद छोटे आकार में समेट दिया है। अगरतला के कला शिक्षक बिजॉय देवनाथ ने करीब 700 माचिस की तीलियों, आइसक्रीम की लकड़ियों और कागज की मदद से माँ दुर्गा की छोटी सी प्रतिमा तैयार की है। उनकी ये कला बेकार पड़ी चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने और पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी देती है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी पंडालों की सजावट लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ एक पंडाल को कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर का रूप दिया जा रहा है। मंदिर की खास बनावट और ऊंचे शिखरों की झलक इस पंडाल में देखने को मिलेगी। अंकोर वाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और अब केरल, जहाँ नवरात्रि की एक अलग ही परंपरा देखने को मिलती है। इसे बोम्मई गोलू कहा जाता है। इसमें देवी देवताओं की मूर्तियों और रंग बिरंगी गुड़ियों को सीढ़ियों की तरह सजाया जाता है। कहीं 3, कहीं 5 तो कहीं 11 स्तरों पर सजी ये मूर्तियां पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा के जीवन की झलक पेश करती हैं। ये परंपरा कई परिवारों में पीढ़ियों से चली आ रही है।
1: और सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि भारत के बिहार राज्य में एक दर्दनाक नाव हादसा, गंगा नदी में नाव पलटने से 13 बच्चों की जान चली गई। हादसा कल रात वैशाली जिले के रागोपुर इलाके में हुआ, जब करीब 20 लोगों को लेकर जा रही एक नाव नदी में पलट गई। सभी लोग एक गांव में भोज में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि लापता लोगों की तलाश के लिए आज भी बचाव अभियान जारी रहा। बताते हैं मौसम के हाल की ओर। आम हालत, मैस्केनिस के दक्षिण में पाया जाने वाला जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे इलाके पर सामान्य हवाओं का असर बनाए रखा है। रात से कुछ बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है रात के दौरान और कल सुबह बादल घिराएंगे और विशेषकर पूर्व दक्षिण और सटपातों पर वर्षा होगी। दोपहर बाद में आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। विशेषकर दक्षिणी लगूनों में रात के दौरान समुद्र की स्थिति में सुधार आएगी। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंटीप्लाटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान सेंटीप्लाटों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:11 पर और कल सुबह सूर्योदय 5:39 पर।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी फैजन है, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अब हम शुभ समाचारों की ओर। शुभ समाचार सुनिए। धनी लेन सैपुल में 40 साल की 40 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हेमा देवी दोमा पैदाश्रम जूतन और जिन्हें अनुष्का के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके पति अनुप दोमा के घर सैपुल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमरो एट हाफ पास्ट 10 AM। सुल्फिरिनो नंबर चार वाकुआ में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिंदुमती सिपरसाद पैदाश्रम रामानंद सिंह और जिन्हें मिला के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे जागीसर लेखराज सिंह के घर सुल्फिरिनो नंबर 4 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 11 AM। राय रोड कांटों बेल्डो पॉम्पलेमूसेज में 79 ईयर्स ओल्ड की कुमारी जयवंती मनबुदुना जिन्हें

0: सतवंती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर कौतों बेल्डो पॉम्पलमुस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। लेस्कालिये ब्रांच रोड रिपाई में, क्षमा कीजिए, ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। 83 साल की, 83 years old की श्रीमती पवित्र देवी बहुरन, श्रीमती पवित्रा देवी बहुरन, पैदाश नाम बेचू किशन दयाल और जिन्हें सविता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शुक्रवार को दिन के 1 बजे लाशा पेलौदों दिल्ली एंसन बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगाद की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Rafthar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

RM2 Radio Masti. Music all day long. Radio Masti sunte raho. बज के 43 मिनट्स हो चुके हैं माय डियर लवली लिसनर्स, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन ऑरेंज टू रेडियो मस्ती. मैं गिनिशा ऑन द माइक जो साथ दे रहे हैं विद सच ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग गाने. सो विशिंग ऑल ऑफ यू फॉर गुड इवनिंग, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम. रफ्तार वाइब्स के थर्ड आवर में आपका स्वागत है.

such a beautiful track, प्यार करते हो ना? बिल्कुल जी, हम तो करते ही रहते हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स से. एंड ऑल दोस हु आर ड्राइविंग, जो घर वापस जा रहे हैं, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना. एंड जस्ट रीच सेफली होम एंड स्टे सेफ बैक होम एंड प्रोटेक्ट यू एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिली. और बस फॉर एवरी लेटेस्ट अपडेट जो है, हमेशा MBC के जितने भी TV चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, फॉलो करते रहना. यू विल बी अपडेटेड फॉर ईच एंड एवरी अपडेट जो आ रहे हैं. एंड यस, कीप ऑन एंजॉइंग द गुड म्यूजिक ऑलवेज ऑन आवर टू रेडियो मस्ती.

नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: शाम हो गई है और अब थोड़ा सा रिलैक्स होने का वक्त हो गया है। दिन भर की भागा दौड़ी उसको बाय कहने का वक्त आ गया है और अपनी फेवरेट बॉलीवुड मेलोडीज के साथ जुड़ने का वक्त भी आ गया है। हम लाए हैं सुकून के कुछ पॉजिटिव वाइब्स और पल, कुछ ऐसे गाने जो दिल को छू जाएंगे। सो शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपनी शाम को बनाइए ब्यूटीफुल। सुनते रहो क्योंकि ये शाम आप ही के है नाम।

0: टू रेडियो मस्ती।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरम्भ करें दुर्गा माँ की।
3: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

पूरे दिन के काम के बाद ये तो रियलाइज होता है कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। एक छोटी स्माइल, किसी अपने का मैसेज, या फिर रेडियो पर आपका फेवरेट गाना। तो आज की शाम नेगेटिविटी को करिए साइड में और पॉजिटिव थॉट्स को रखिए अपने पास। याद रखिए कल एक नया दिन होगा और साथ में आएंगी नई अपॉर्चुनिटीज। तो अभी अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रहिए और म्यूजिक को थोड़ा वक्त दीजिए कि वो अपना असर फैला पाए। तो चलिए अभी एक सोलफुल बॉलीवुड मेलोडी, उसके साथ

0: Evening Lounge.
1: RM2
0: Radio Masti.
2: हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, मेहनत कर कर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन एक चीज याद रखनी जरूरी है कि सक्सेस की स्पीड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका डायरेक्शन। हो सकता है कि आज का दिन थोड़ा चैलेंजिंग रहा हो, लेकिन आपकी मेहनत ये कभी वेस्ट नहीं जाती। हर छोटा स्टेप आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाता है। तो खुद पर भरोसा रखिए, अपने ड्रीम्स को जिंदा रखिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। आज की शाम थोड़ा सुकून, थोड़ी हिम्मत और ढेर सारी बॉलीवुड की मेलोडीज़।

0: Evening Lounge.
1: और जैसे हम कहते आ रहे हैं कि आपको सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो ऐसे ही वेंचर आउट बिल्कुल मत कीजिएगा. फॉलो ऑल द डायरेक्शंस बीइंग प्रोवाइडेड. और रेडियो के जरिए हम आपका साथ तो दे ही रहे हैं 24/7. सुबह जरूरी है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए और सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी फैमिली के पास हैं.

चलिए बातों पहुंच गए द सेकंड आवर, 8 जरूर बज चुके हैं और धीरे धीरे ये जो घड़ी की सुई है वो आगे लेकर चलती जा रही है, वक्त के साथ चलते जा रहे हैं और गानों के साथ भी। कभी एक गाना हमें किसी स्पेशल पर्सन की याद दिलाता है तो कभी पुराने पलों की खुशबू ले आता है। आज थोड़ा सा वक्त निकालिए फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और सबसे जरूरी खुद के लिए। एक प्यारी सी कॉन्वर्सेशन, एक हार्ट फेल्ड थैंक यू या फिर एक वार्म हग, छोटी छोटी चीजें ना जिंदगी को स्पेशल बनाती हैं। बॉलीवुड के सुरों के साथ दिलों को रखिए कनेक्टेड।

अच्छा कहते हैं कि जो बीत गया उसे लेसन बनाइए, यानी कि उसे सबक लीजिए, और जो आने वाला है उसे अपॉर्चुनिटी समझिए। हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं, और हर प्रॉब्लम का सलूशन इसी वक्त मिलना ये भी तो जरूरी नहीं। थोड़ा पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, और खुद को भी थोड़ी सी काइंडनेस दीजिए। अरे आप इंसान हैं, मशीन नहीं, तो वरीज को

कल एक बार फिर से एक नया दिन शुरू होगा और भागा दौड़ी और बाकी जैसे मैंने कहा कि सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सारे डायरेक्शंस फॉलो करते रहिए और फिर अपनी प्लानिंग भी करके रखिए। बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी जिनको एसेंशियल सर्विसेज में जाना पड़ रहा है और कुछ ऐसे भी जो कि अपना रेगुलर काम कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन एक छोटा सा काम अभी हम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, मे बी किसी ने आपकी आज हेल्प की, शायद आपने कोई डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट की या फिर आज आपने बस गिव अप नहीं किया। देयर समथिंग टू सेलिब्रेट, ग्रैटिट्यूड से दिल हल्का होता है और होप से कल और ब्राइट लगता है। तो मुस्कुराइए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए और याद रखिए आपकी जो स्टोरी है ना वो अच्छी तरह लिखी जा रही है। कीप बिलीविंग, कीप शाइनिंग।

0: Evening Lounge, Evening Lounge, RM2, Radio Masti.
1: Dear listeners, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं आज की शाम के आखिरी म्यूजिकल मोमेंट की तरफ। उम्मीद है कि इन दो घंटों के गाने आपके स्ट्रेस को थोड़ा कम और स्माइल्स को थोड़ा ज्यादा कर गए होंगे। अब रात को आराम से एंजॉय कीजिए। घर पर हैं तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और अगर एसेंशियल सर्विसेज में और फिर भी हमारे साथ दे रहे हैं तो आपको बहुत सारा साहस, और लेट्स होप सिचुएशन जल्दी अंडर कंट्रोल आ जाए, सब ठीक हो जाए। जो अच्छा है उसके लिए थैंकफुल रहिए, और जो मुश्किल था उसे कल के लिए एक लेसन बना लीजिए। गुड वाइब्स, पीसफुल नाइट्स और खूबसूरत ड्रीम्स के साथ सुनते रहो। जल्दी मुलाकात होती है। नमस्कार।

गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करे। आई रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। सो इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती। चले 3 घंटों के सफर में स्वागत है आपका।

Well, you know, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या होता है? क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ सुबह उठना, अपने काम पर जाना, जिम्मेदारियां निभाना और फिर रात को सो जाना, यही है जिंदगी? हमारे ख्याल से जिंदगी तो एक खूबसूरत सफर है जिसमें हर दिन एक नई कहानी, हर मोड़ पर एक नया सबक और हर पल एक नया एहसास छुपा होता है। जिंदगी को बोझ समझकर नहीं बल्कि ऊपर वाले का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा समझकर जीना सीखिए। तो बस अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते चले एंड द नेक्स्ट गाना गुजाची वोल्ड।

आज के जमाने में हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करने में इतने व्यस्त बिजी हो जाते हैं कि अपनी खुशियों को ही भूल जाते हैं, isn't it? किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, कोई हमसे ज्यादा कामयाब है, तो कोई दुनिया भर की सैर कर रहा है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि उनकी जिंदगी के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? देखिए, हर इंसान का सफर अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं और उसकी मंजिल भी अलग है। That's why अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से मत करना। कल आप जो थे आज उससे बेहतर बनने की कोशिश करें। अपनी गलतियों से सीखें, अपनी खूबियों को पहचानिए और अपनी रफ्तार से आगे बढ़िए।

दोस्तों, जिंदगी की असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ी या आलीशान घर नहीं होती। असली दौलत वो रिश्ते हैं जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामते हैं, आपकी खामोशी को समझते हैं और आपकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी उदासी को पहचान लेते हैं। लेकिन अक्सर हम अपने काम और भाग दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि उन लोगों को वक्त देना भूल जाते हैं जो हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। कभी माँ बाप के पास बैठकर उनकी बातें सुनिए, कभी अपने बच्चों के साथ दिल खोल कर हंसिए, कभी किसी दोस्त को बिना किसी वजह के फोन दीजिए। हर रिश्ते को महंगी चीजों की नहीं, वक्त, इज्जत और अपनापन की जरूरत होती है।

लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, जैसे कि ये गाने अभी आप सुन रही हैं। दोस्तों, मुस्कुराना तब आसान होता है जब सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो, लेकिन जिंदगी की असली खूबसूरती तब नजर आती है जब मुश्किलें सामने हो, रास्ते कठिन हो और फिर भी हम अपनी हिम्मत ना हारे। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होता या आपकी जिंदगी में परेशानियां नहीं है। इसका मतलब है कि आप परेशानियों को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हर मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। बुरे दिन आते हैं, लेकिन वो हमें कुछ न कुछ सिखा कर भी जाते हैं। जब जिंदगी आपको आजमाए तो खुद पर भरोसा रखिए। जब दिल उदास हो तो अपने किसी करीबी से बात कीजिए।

जिंदगी जीने के तरीके के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाइएगा। जिंदगी में हर इंसान दोस्त आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा आप उससे उम्मीद करता है ना। कभी कोई आपका दिल दुखाएगा, कभी कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाएगा, और कभी कोई आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ लेगा। लेकिन दूसरों के गलत व्यवहार की वजह से अपने दिल को नफरत से मत भरिए। माफ करना सीखिए, क्योंकि माफी आपको बीते हुए दर्द से अलग बढ़ने में मदद कर सकती है। लेकिन याद रखिए, माफ करने का मतलब बार बार अपने साथ गलत होने देना भी नहीं है। अपनी इज्जत, अपनी शांति और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। तो अपने दिल को साफ रखिए, अपनी नीयत अच्छी रखिए और अपनी जिंदगी को सुकून के साथ जीना सीखिए।

मानते हैं कि छोटी छोटी खुशियों में जीना चाहिए, है ना? क्या खुशी सिर्फ तब मिलती है जब कोई बड़ा सपना पूरा हो, प्रमोशन मिले या कोई महंगी चीज खरीदी जाए? नहीं, खुशी तो सुबह की पहली चाय में होती है, बारिश की बूंदों में होती है, पसंदीदा गाने की धुन में भी है और किसी अपने की आवाज सुनने में भी है। खुशी उस मुस्कुराहट में है जो किसी अनजान के चेहरे पर आपकी वजह से आ जाए। खुशी उस सुकून में है जब रात को आपका जमीर आपसे कहता है कि आज आपने किसी का बुरा नहीं किया और अपनी तरफ से अच्छा बनने की कोशिश की।

हमें सब कुछ नहीं देती है ना, खुशियां भी हैं, गम भी हैं। हर वक्त मजबूत दिखना जरूरी नहीं। कभी थक जाएं तो आराम कीजिए, कभी उदास हो तो अपनी भावनाओं को समझने का वक्त दीजिए। आपकी खुशी और आपका सुकून भी मायने रखता है। याद रखें, जब आप अपनी देखभाल करते हैं तब आप दूसरों के लिए भी बेहतर तरीके से मौजूद रह पाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में दूसरों को जगह दीजिए, मगर खुद को कभी नजरअंदाज मत कीजिएगा।

Really hope इन गानों को आप सुन रहे हैं, उनका मजा ले रहे हैं, तो ऐसे ही जिंदगी का भी मजा लेते चले। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी गलती ना की हो। गलतियां जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनसे मिलने वाली सीख हमारे भविष्य को बेहतर बना सकती है। कभी हम गलत फैसले कर लेते हैं, कभी किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और कभी किसी मौके को पहचान ही नहीं पाते हैं। बाद में हमें अफसोस होता है और हम सोचते हैं काश हमने कुछ ऐसा ना किया होता। लेकिन दोस्त, बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, उससे सीख कर आने वाले कल को जरूर हाँ बेहतर बनाया जा सकता है। तो आपकी पहचान इस बात से बनती है कि गिरने के बाद आप कितने हिम्मत से उठते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सीखने के लिए तैयार रहना जरूरी है।

अच्छी जिंदगी सिर्फ अपनी खुशियों तक सीमित नहीं होती। जिंदगी का असली अर्थ तब और गहरा हो जाता है जब हम अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों और तकलीफों को भी समझने लगते हैं। किसी से बात करते वक्त उसकी इज्जत कीजिए, किसी की परेशानी सुनकर उसका मजाक मत उड़ाइए और किसी की मजबूरी को अपना फायदा उठाने का मौका मत समझिए। हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान किस दर्द से गुजर रहा है। कभी एक मीठा बोल, एक सहानुभूति भरा व्यवहार या मदद का एक छोटा हाथ किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। इज्जत दीजिए, प्यार बांटिए, इंसानियत को अपना सबसे बड़ा धर्म बनाइए, क्योंकि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमेशा किसी बड़े काम की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ा योगदान होता है।

आज की दुनिया में पैसा बहुत जरूरी है। पैसा हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे परिवार को सुरक्षा देता है और हमें बेहतर मौके प्रदान करता है। इसलिए मेहनत करना, आगे बढ़ना और आर्थिक रूप से मजबूत बनना बहुत अच्छी बात है। बट इस सफर में एक बात का ध्यान जरूर रखिए, पैसा कमाने के दौर में अपनी सेहत, अपने रिश्ते और अपने मन का सुकून मत खो दीजिए। अगर हमारे पास सब कुछ हो लेकिन उसे महसूस करने के लिए वक्त नहीं है तो उस कामयाबी का आनंद कैसे लेंगे। अपने लक्ष्य बनाइए, पूरी मेहनत कीजिए, अपने सपनों को सच करने के लिए आगे बढ़िए, लेकिन अपनी जिंदगी में संतुलन, बैलेंस भी बनाए रखें। क्योंकि जिंदगी का असली मजा सिर्फ ये नहीं कि हमने कितना हासिल किया, बल्कि ये है कि हासिल जो किया उसके साथ हम कितने खुश और संतुष्ट हैं। बाय बाय, टेक केयर।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

सोनी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए, जापानी परियां मुस्कुराए।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

0: RM2 Radio Musti.
1: Good night.
2: हाँ, good night.
1: अच्छा, good night.